सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। प्रातः के 5:59 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं ज्ञान ज्योति।

जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है। इसमें कई आयाम हैं जिनका प्रबंधन करना होता है। समय एक ऐसा ही अति मूल्यवान आयाम है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि इसका प्रबंधन अच्छे से करे। फिर भौतिक, अभौतिक, पारिवारिक, हर तरह के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। हमारे वैदिक ग्रंथ भी समय प्रबंधन पर जोर देते हैं और हमें भी समय की महत्ता को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान ज्योति। प्रातः उठकर सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उगता हुआ सूरज जीवन में प्रसन्नता लाता है और प्रसन्न मन से की गई दिन की शुरुआत सदैव अच्छी होती है।

जिस तरह हम घर को तथा स्वयं को सजाते हैं, उसी प्रकार गुरु हमारी जिंदगी को सजाता है। इसी कारण हमारे जीवन में गुरु का खास महत्व होता है।

साधना करने का जो भी अवसर हमें मिलता है उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना करने से मन शांत और ईश्वर की प्राप्ति होती है।

हमें उन विचारों को खुद से बचाना, खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे मन में डर को जन्म देते हैं, अपितु हमें शुद्ध और अच्छे विचारों को अपने मन में ज़रूर जगह देनी चाहिए।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच

कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है? विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर सुनिए संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 7:05 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर का। 7:35 में

नेट पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक संसार। सुबह 8 बजे सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। 8:30 पर सुनिएगा हिमाचल डायरी का आज का अंक। 8:35 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी शिमला से। 9:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10 बजे हिंदी समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 10:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता। 10:15 पर झूमते तराने कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत होंगे। 10:45 का समय रहेगा कार्यक्रम लोक रंग का। सुबह 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे देवधरा के गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। दोपहर 1 बजे सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर आप सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे हिंदी समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 5:05 का समय रहेगा भजन संध्या कार्यक्रम का। युवाओं का कार्यक्रम युवमंच लेकर हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी शिमला से। 6:05 का समय रहेगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने का। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शाम 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। 7:25 पर सुनिएगा रौन का गराएं दिया। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। माफ कीजिएगा, आकाशवाणी दिल्ली से आप ये समाचार सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे साहित्य जगत और 10:30 पर सुनिएगा रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम चांदनी रातें। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने को है, थोड़ी देर में सुनिए संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी

0: और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:07 हुए हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

जी सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। हर रोज की तरह हाजिर हैं आज भी जानकारियों और मनोरंजन का पिटारा लेकर। तो देर न करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस विचार के साथ। श्रोताओं, आज का विचार है कि हमें अपने जीवन में तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है कोशिश, कोशिश अपने बेहतर भविष्य की। अपने आने वाले भविष्य के लिए हमें मन से और पूरी लगन से कोशिश करनी चाहिए। अगला सच, अपने काम में सच्चाई। जब हम अपने काम में को करते हैं तो उसमें हमें पूरी सच्चाई रखनी चाहिए। और तीसरा है विश्वास, विश्वास उस परमात्मा पर। जब हम पूरी कोशिश से अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई रखते हैं तो खुद ब खुद भगवान पर भरोसा हो ही जाता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बल्कि हम जिस काम को इतनी मेहनत से कर रहे हैं उसमें हमें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तभी तो इन तीनों बातों का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो श्रोताओं, ये था आज का विचार और अब सुनिए ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
4: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
4: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
3: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
4: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
6: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MR

0: एमआरआई, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखु सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखु सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी, इस खूबसूरत से गीत और इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। अब बात आज के इतिहास की। 23 जून आज के दिन 1810 की बात करें तो बॉम्बे के डंकन डॉक का निर्माण कार्य पूरा हुआ था आज ही के दिन। और 1868 में क्रिस्टोफर एल शोल्ड को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था। और 1930 में साइमन आयोग ने एक संघीय भारत और बर्मा के लंदन स्थित पृथक होने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही 1960 में आर्कटिक संधि संपन्न हुई थी और इसके तहत आर्कटिक महाद्वीप को वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ১৯৬০ की बात करें तो जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था। 1991 में अफ्रीकी देश मालदोवा ने आजादी की घोषणा की थी। और 1994 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया था और उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा भी आज ही के दिन हुई थी। और 1995 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव साइप्रस में शांति सैनिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में पारित किया था। 2008 में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की थी। और 2012 की बात करें तो ईस्टन ईटन ने अमेरिकी ओलंपिक परीक्षण में डेक्थलॉम में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था।

0: 2013 की बात करें तो वालेंडा अमेरिका के ग्रैंड कैनियन की पहाड़ी को रस्सी पर सफलतापूर्वक चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। की बात करें तो गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था आज ही के दिन। तो श्रोताओं, ये थी आज का इतिहास। अब वर्तमान की ओर बढ़ते हैं और एक और गीत आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन गीत से पहले ये विज्ञापन।
1: नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
7: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
8: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

जी, इस खूबसूरत से गीत और निट विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। अब रुक करेंगे आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो ईरान को युद्ध रोकने को राजी करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऑफर दिया है। स्विट्जरलैंड में सोमवार यानी पिछले कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका पर से प्रतिबंधों को हटाकर दुनिया भर को तेल बेचने की मंजूरी दे दी है। वेंस ने कहा है कि ईरान द्वारा होर्मुज को खोलने और अपने परमाणु सेंटरों के निरीक्षण की अनुमति देने के बदले ट्रंप ने ऑफर दिया है। ग्लोबल ऑयल ट्रैकर के अनुसार ईरान अब रोज लगभग 20 लाख बैरल तेल बेच सकेगा। पहले दौर की वार्ता को सफल बताते हुए वेंस ने कहा कि अगले 30 दिनों में ईरान की अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया में संपत्तियों को डीफ्रीज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि इससे होने वाले आय का इस्तेमाल ईरान अमेरिकी सोयाबीन व मक्का खरीद के लिए ही कर पाएगा। वहीं CBSE 12वीं की जिन छात्रों के अंक वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन के बाद बदले हैं उनका अपडेटेड फिजिकल मार्कशीट रीजनल ऑफिस से मिलेगा। पहले पुरानी ओरिजिनल मार्कशीट जमा करनी होगी। अपडेटेड मार्कशीट डिजी लॉकर अकाउंट में भी उपलब्ध है और सभी कामों के लिए ये मान्य है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर के लिए नया रेलवे स्टेशन बनेगा। स्टेशन सुंदरपुरा में बनेगा और 12 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। अभी रिंग्स जंक्शन उतरकर 17 किलोमीटर सड़क मार्ग से मंदिर जाना पड़ता है। नए स्टेशन से दूरी घटकर 11 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक दिल्ली में शुरू हुई। मेजबानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं और इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी पहुंचे हैं। उनकी यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि भारत चीन रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है। तो ये तो थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अब कुछ खेल खबरें। सबसे पहले ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर 3-2 की जीत के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के लंदन लीग में मंगलवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। नीदरलैंड के अलावा भारत ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को भी 3-1 से हराया था। पाक के खिलाफ पिछले 10 सालों में भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है। टीम इंडिया पिछले 17 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ अजय रही, जिसमें 15 जीत और 2 ड्रॉ शामिल हैं। वहीं जर्मनी में जारी IFSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 16 वर्षीय शूटर प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्डन मेडल जीता। उन्होंने 251.3 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। हाल ही में 10वीं पास करने वाले प्रीतम का ये महज दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और इवेंट में भारत के 5 स्वर्ण सहित 11 पदक हो गए हैं।

0: चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला 400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। श्रावणी नंदा, स्नेहा शानुवल्ली, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की चौकड़ी ने 43.85 सेकंड का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया। भारत में टूर्नामेंट का समापन कुल 3 पदकों के साथ किया गया। तो ये तो थी आज की कुछ ताजा तरीन खेल खबरें। अब वक्त एक गीत का, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
5: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये सुप्रभात हमीरपुर का समय भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आज का ये कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त अस्मिता को संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। और आपसे चलते चलते एक बार फिर से कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:35 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संसार।

और सुनवाते हैं आपको प्यारे प्यारे लोकगीत भी। तो जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं, आज एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, देव संस्कृति और समृद्ध लोक परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति केवल मंदिरों, मेलों और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के पारंपरिक शिल्प, हस्तकलाएं और लोक वाद्य यंत्र भी इसकी विशिष्ट पहचान है। किसी भी प्रदेश की संस्कृति उसकी विरासत होती है, और जब उस विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती हो तो ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बन जाता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के तीन पारंपरिक उत्पादों हिमाचल रणसिंघा, हिमाचल कांस्य नक्काशी शिल्प और हिमाचल हस्तनिर्मित गलीचा को भौगोलिक सांकेतिक अर्थात GI टैग प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि न केवल इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान को स्थापित करती है, बल्कि उन कारीगरों और शिल्पकारों के वर्षों के परिश्रम और कला को भी सम्मान देती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि GI टैग क्या है। GI अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर दिया जाता है। इसका मतलब है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता, विशेषता या प्रतिष्ठा किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है।

और जब किसी उत्पाद को GI टैग मिलता है तो उसकी पहचान सुरक्षित हो जाती है और कोई दूसरा क्षेत्र उसी नाम से उस उत्पाद को नहीं बेच सकता। ये टैग स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों के हितों की रक्षा करता है तथा उनकी कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आज के आधुनिक युग में अनेक पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही हैं। ऐसे समय में GI टैग मिलना इन कलाओं के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे स्थानीय शिल्पकारों को आर्थिक लाभ मिलेगा, युवाओं का रुझान पारंपरिक व्यवसायों की ओर बढ़ेगा और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। श्रोताओं, बात करते हैं पहले उत्पाद की, तो वो है हिमाचल रणसिंघा। हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति विशेष विश्व प्रसिद्ध है और इसी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है रणसिंघा। रणसिंघा एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है। ये आमतौर पर पीतल या तांबे से बनाया जाता है और इसका आकार अर्धचंद्राकार होता है। जब इसे बजाया जाता है तो इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और वातावरण में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है। हिमाचल में किसी भी धार्मिक आयोजन, देव यात्रा, मेले या उत्सव की कल्पना रणसिंघा के बिना अधूरी मानी जाती है। कुल्लू दशहरा, मंडी की शिवरात्रि मेला, चंबा के मेले तथा विभिन्न देव परंपराओं में रणसिंघा विशेष रूप से बजाया जाता है। जब स्थानीय देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है तो ढोल, नगाड़ों और करनाल के साथ रणसिंघा की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है। ये केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान और देव परंपरा का जीवंत प्रतीक है। GI टैग मिलने से रणसिंघा बनाने वाले कारीगरों को भी नई पहचान मिलेगी। इससे इस कला को संरक्षण मिलेगा और युवा पीढ़ी भी इसे सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगी। श्रोताओं, अगले उत्पाद की बात करेंगे जो कि है हिमाचल कांष्ठ नक्काशी शिल्प। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक गीत आपको सुनवाते हैं और अगली जानकारी इस गीत के बाद आपके साथ साझा करेंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी इस मीठे से लोकगीत और इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम लोक संसार में। अब बात करेंगे हिमाचल के दूसरे उत्पाद के बारे में जो कि है हिमाचल कांष्ठ नक्काशी शिल्प। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और मंदिरों की भव्यता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हिमाचल के प्राचीन मंदिरों को देखें तो उनकी दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों और स्तंभों पर बनी अद्भुत लकड़ी की नक्काशी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसी कला को हिमाचल कांष्ठ नक्काशी शिल्प कहा जाता है। हिमाचल में देवदार, तून और अन्य मजबूत लकड़ियों पर अत्यंत बारीक नक्काशी की जाती है। कारीगर धार्मिक प्रतीकों, देवी देवताओं, फूलों, बेल बूटों और पारंपरिक आकृतियों की लकड़ी पर उतारते हैं। यह कला सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी और सिरमौर के अनेक प्राचीन मंदिर इस कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन मंदिरों की नक्काशी केवल सजावट नहीं बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों की कहानी भी कहती है। हिमाचल प्रदेश का तीसरा उत्पाद जिसे GI टैग मिला है वे है हिमाचल हस्तनिर्मित गलीचा। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में हाथ से बने जाने वाले ऊनी गलीचे अपनी सुंदरता, मजबूती और आकर्षक डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गलीचों को पारंपरिक करघों पर हाथ से बुना जाता है। इनमें ऊन का उपयोग किया जाता है और कई बार प्राकृतिक रंगों से इन्हें सजाया जाता है। गलीचों पर बने डिजाइन हिमाचल की संस्कृति, प्रकृति, पर्वतों, फूलों और लोक जीवन से प्रेरित होते हैं। हजारों महिलाएं और कारीगर इस कार्य से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये शिल्प रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। हस्तनिर्मित होने के कारण प्रत्येक गलीचा अपने आप में एक अनूठी कलाकृति होती है। अब इन गलीचों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी, स्थानीय बुनकरों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी कला को संरक्षण भी प्राप्त होगा। श्रोताओं, GI टैग केवल पहचान नहीं देता बल्कि आर्थिक विकास का भी माध्यम बनता है। जब किसी उत्पाद को GI टैग मिलता है तो उसकी मांग बढ़ती है, इससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हिमाचल के इन तीनों उत्पादों के साथ भी यही होने की उम्मीद है। आज के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि युवा इन पारंपरिक कलाओं को सीखें, इनके प्रचार प्रसार में सहयोग करें और स्थानीय उत्पादों का उपयोग बढ़ाएं, तो ये कलाएं आने वाले कई दशकों तक जीवित रह सकती हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को सफल बनाने में भी ऐसे उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश के रणसिंघा काष्ठ नक्काशी शिल्प और हस्तनिर्मित गलीचे को GI टैग मिलना प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये सम्मान उन कारीगरों और शिल्पकारों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने अपनी कला को पीढ़ियों तक जीवित रखा। GI टैग न केवल इन उत्पादों की पहचान को सुरक्षित करेगा बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा। तो श्रोताओं, ये तो हमने बात की हिमाचल के GI टैग, जो 3 चीज़ों को मिला है, हिमाचल रणसिंघा, हिमाचल कांस्य नक्काशी शिल्प और हस्तनिर्मित गलीचे की बात हमने की। और अब वक्त है एक और लोकगीत का।

जी, इस लोकगीत के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम लोक संसार में। अब रुख करेंगे हमीरपुर से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। तो सबसे पहली खबर है कि HP बटालियन हमीरपुर के तहत पहली बार स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 108 NCC कैडेट्स भारतीय सेना में अग्निवीर बने हैं। इस साल अग्निवीर भर्ती हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के युवाओं के लिए थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत लगभग 1000 युवाओं की सिलेक्शन हुई है। इसी में कैडेट्स का ये आंकड़ा शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बटालियन के तहत बीते वर्ष केवल 27 NCC कैडेट्स ही अग्निवीर भर्ती हुए थे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में 13 अफसर भी सिलेक्ट हुए हैं। इनको देखते हुए अब NCC कैडेट्स को बटालियन की ओर से NDA और CDS की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी दक्ष करने को लेकर धरातल पर कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसके लिए दूसरे चरण में 27 जुलाई को सारे राष्ट्र में DC के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन दिए जाएंगे। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा के संरक्षक गौ भैरव उपासक ग्वाल संत गोपालनंद महाराज पहली बार हमीरपुर जिला के गौशाला जमली धाम में गौ माता का संदेश लेकर पहुंचेंगे। 28 जून को सुबह 9 बजे शंख ध्वनि से बैठक शुरू कर 11 बजे समाप्त हो जाएगी। हिमाचल गौ सेवा समिति के अध्यक्ष रसील सिंह मनकोटिया ने 28 जून को अधिक से अधिक लोगों को जमली धाम गौशाला में पहुंचने का आह्वान किया है।

वहीं अगली खबर की बात करें तो बाल विकास परियोजना हमीरपुर के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सही सहायिका के कुल 14 पदों के लिए पात्र महिलाओं से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 जुलाई तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सीडीपीओ सुनीता शर्मा ने कहा है कि बस्सी झनियारा पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र मुहान और नगर निगम क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र MCW7A और में कार्यकर्ता का एक एक पद भरा जाएगा। वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, आयोग के अन्य सदस्य विजय डोगरा, दिग्विजय मल्होत्रा तथा शालिनी जम्वाल सोमवार यानी पिछले कल जिला हमीरपुर के 3 दिवसीय दौरे पर यहां जिला मुख्यालय पहुंचे। आयोग के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों ने अपने प्रवास के पहले दिन यहां हमीर भवन में सफाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर नगर निगम, जिला की अन्य शहरी निकायों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं और अन्य बड़े संस्थाओं के अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा सफाई कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की। इस अवसर पर कुलदीप कुमार ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं तथा अधिनियम बनाए हैं और इनका लाभ सभी सफाई कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए। नियमित और अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी सभी आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में 27 जून को जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां इंटरव्यू लेंगी। बहुतकनीकी महाविद्यालय के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस मेगा जॉब ऑफर का शुभारंभ हिमाचल के नगर एवं ग्रामीण नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी करेंगे। डॉक्टर पंकज जैन ने बताया है कि इस मेगा जॉब ऑफर में 25 से अधिक कंपनियां युवाओं के साक्षात्कार लेंगी और चयनित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान करेंगी। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमीरपुर से जुड़ी कुछ खास खबरें और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी यहां पर खत्म हो रहा है। तो लेते हैं आपसे इजाजत और कहते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संसार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।

0: करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
8: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
7: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
8: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
7: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
8: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
7: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan at Padma Shri. The president will confer 65 Padma Awards today. A report.
9: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mamuti, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the president today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
7: New Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
10: I find the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
11: Designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
12: मी 10-12 वर्षापासून मी तर शिकायला लागलो, पण आता मला इकडे व्यवसाय नाही.
13: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
14: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me, you should become a doctor or do some research in this field.

भुगतान को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन के आधार पर बचा हुआ पूरा एरियर जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जुलाई में होने वाले इस भुगतान के साथ ही प्री 2016 पेंशनरों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन एरियर का 100% भुगतान पूरा हो जाएगा और इसके बाद किसी भी पात्र पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर का कोई लंबित एरियर शेष नहीं रहेगा।

वहीं अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में इस साल रबी सीजन में सरकारी गेहूं खरीद ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 3,200 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन विभिन्न खरीद केंद्रों के माध्यम से 4,567.50 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। यह निर्धारित लक्ष्य का 143% है, यानी सरकार ने लक्ष्य के करीब 43% अधिक गेहूं खरीदा है। सरकार ने राज्य आपूर्ति निगम के माध्यम से किसानों से 2,585 रुपये MSP प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा। सरकार ने प्रदेश के 1,030 किसानों से 11.80 करोड़ रुपये की गिरावट गेहूं की खरीद की है। जिला स्तर पर सिरमौर से किसानों में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई। यहां से 1,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य से मुकाबले 1,977.70 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जो लक्ष्य का 198% है।

वहीं विद्युत उपमंडल टौणीदेवी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 27 जून तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता दीपक चौहान ने कहा है कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इसका भुगतान 27 जून तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तिथि तक बिल जमा ना करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे, जिन्हें बहाल करवाने के लिए उन्हें 250 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ेगा। तो हिमाचल डायरी के आज के संक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:35 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे A.R. रहमान। लीजिए अब सुनिए धड़क 2 फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में। संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ऊंचाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जावेद अली, दीपाली सेठ, मधुवंती बागची की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। यह है सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें। मनोज मुंतशिर और साथी का लिखा हुआ ये गीत है। संगीत रोचक कोहली का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
6: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: बॉर्डर टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थी दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक। कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

परम सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य की। अमिताभ भट्टाचार्य ने बोल लिखे थे।

आज है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को बढ़ावा देना और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना है। ये दिन हमें सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए जन सेवा के इस पावन भावना को प्रणाम करें और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया जाए।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और साथी संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मालिनी अवस्थी की आवाज़ में हक फिल्म का ये गीत।

हक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मालिनी अवस्थी और साथियों की। कौशल मुनीर ने बोल लिखे थे और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं एक और ब्रेक।

0: फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता राज बब्बर जी का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सुनिएगा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर, सुनना ना भूलिएगा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को है, थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षर। पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिलफेड की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए की लागत से 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड की मंडी स्थित चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है, जबकि यहां करीब 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के मिल्कफेड की चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इकाई प्रभारी विश्वकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए प्लांट में एक अतिरिक्त पॉश्चराइजर स्थापित किया गया है और रेफ्रिजरेशन क्षमता बढ़ाने का कार्य भी जारी है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद प्लांट की क्षमता बढ़कर लगभग 1,50,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ा है। जनवरी 2023 में लगभग 9,000 दुग्ध उत्पादक जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21,000 से अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मई माह के लिए लगभग 15,70,00,000 रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है और जल्द ही भुगतान की पूरी प्रक्रिया DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश में पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशन धारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के वर्ष 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं की CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश में झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपयों की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 486 करोड़, वर्ष 24-25 में 526 करोड़ और वर्ष 25-26 में 676 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम सहित रिज मैदान पर इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप शामिल है। राज्य में हरित आवरण

0: में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना के अंतर्गत वन विभाग कुल्लू ने दो निजी संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया है। जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाएं वन विभाग द्वारा चिन्हित वन क्षेत्रों को गोद लेकर पौधारोपण, इको रेस्टोरेशन तथा उनके रखरखाव का कार्य करेगी। प्रदेश की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति से हमारे संवाददाता।
1: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश, शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी रहा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी के भी आसार बने हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, एचआरटीसी कर्मियों को राहत, मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ जारी। बागवानी विभाग में भरे जाएंगे 450 पद, शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, सेब बागवानों को मिलेगी बेहतर तकनीकी सहायता। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिम केयर योजना का दायरा बढ़ा, अब 10 लाख तक स्वास्थ्य कवर। हिमाचल के 37 दवा उद्योगों में बनी 44 दवाएं जांच में फेल, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह से लेकर गैस्ट्रिक रोगों की दवाइयों के साथ 4 सिरप भी शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षरित। पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्ति पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिल्क फैट की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता, प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:31 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: सुनूंगा उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोर आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता दी

सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बी.आर. चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो यह फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राजबब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राजबब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राजबब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभा।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलके।

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद NSD से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और NSD से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने NSD में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। NSD करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप NSD की रिपर्टरी का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपर्टरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सोहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहाँ भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम 5, कलयुग, राज और पूनम है।

संगीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविज़न पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। अब सुनिए लघु वार्ता।

लघु वार्ता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की लघु वार्ता का विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो संवेदनशील होने के साथ साथ सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ा हुआ है, और ये विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। हर वर्ष 23 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन महिलाओं की स्थिति, अधिकारों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। पति की मृत्यु के बाद एक महिला के जीवन में केवल भावनात्मक शून्यता ही नहीं आती, बल्कि कई बार उसे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। आज के आधुनिक युग में हम विकास और समानता की बातें करते हैं, लेकिन दुनिया के अनेक हिस्सों में विधवाओं को आज अब भी भेदभाव, असुरक्षा और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम उनके जीवन को बेहतर बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 में मान्यता दी गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में विधवाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को वैश्विक स्तर पर उठाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा होने के बाद गरीबी, सामाजिक भेदभाव और कानूनी अधिकारों से वंचित होने जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। इनमें से कई महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं होता और वे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करती हैं। इसी वास्तविकता को देखते हुए ये दिवस शुरू किया गया, ताकि सरकारें, सामाजिक संगठन और आम नागरिक इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी को खोना अत्यंत पीड़ादायक होता है, लेकिन कई महिलाओं के लिए ये दुख केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि उनके जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। पति की मृत्यु के बाद एक महिला को अपने परिवार की जिम्मेदारियां अकेले निभानी पड़ती हैं। यदि बच्चे छोटे हों तो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता भी उसी के कंधों पर आ जाती है। इसलिए विधवा होना केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि कई बार सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन जाता है। आर्थिक असुरक्षा विधवाओं के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कई परिवारों में पति ही मुख्य कमाने वाले सदस्य होते हैं। ऐसे में उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आय अचानक समाप्त हो जाती है। महिलाओं को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे रोजगार का अभाव, आर्थिक निर्भरता, बच्चों की शिक्षा का खर्च, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं, दैनिक जीवन की जरूरतें आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं। कई महिलाएं मजबूरी में छोटे मोटे काम करके परिवार चलाती हैं, जबकि कुछ को आर्थिक सहायता के लिए रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी कुछ समाजों में विधवाओं के प्रति कई प्रकार के रूढ़िवादी धारणाएं मौजूद हैं। कई बार उन्हें शुभ अवसरों से दूर रखा जाता है। कुछ स्थानों पर आज भी ये माना जाता है कि विधवा का किसी शुभ कार्य में शामिल होना अशुभ होता है। यह सोच न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के भी विरुद्ध है। वास्तव में किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति उसके सम्मान और अधिकारों को निर्धारित नहीं कर सकती। समाज को ये समझना होगा कि विधवा महिलाएं भी उतनी ही सम्मान और गरिमा की अधिकारी हैं जितना कोई अन्य व्यक्ति। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जैसे अकेलेपन की भावना, अवसाद, चिंता, भविष्य की अनिश्चितता और आत्मविश्वास में कमी। ये सभी समस्याएं उनके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे समय में परिवार और मित्रों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक संवेदनशील बातचीत, भावनात्मक समर्थन
और सकारात्मक वातावरण किसी महिला को इस कठिन समय से उबारने में मदद कर सकता है। जब किसी परिवार में पिता का निधन होता है तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों को भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है, साथ ही कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में माँ को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। वह स्वयं अपने दुख से जूझ रही होती है और साथ ही बच्चों को भी संभाल रही होती है। इसलिए विधवाओं को सशक्त बनाना केवल महिलाओं के हित में नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के हित में है। भारत में समय के साथ काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं। शिक्षा के विस्तार और सामाजिक जागरूकता के कारण लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। फिर भी अनेक क्षेत्रों में विधवा महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार योजनाएं भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। किसी भी महिला के जीवन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो वह अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकती है। आज अनेक विधवा महिलाएं स्वरोजगार अपना रही हैं, छोटे व्यवसाय चला रही हैं, हस्तशिल्प कार्य कर रही हैं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं, डिजिटल माध्यमों से रोजगार प्राप्त कर रही हैं। ये उदाहरण ये दर्शाते हैं कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और बेहतर अवसर प्राप्त कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि विधवा महिलाओं और उनके बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा उन्हें आत्मविश्वास देती है और जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। इतिहास और वर्तमान में अनेक ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्चों को शिक्षित किया और समाज में सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त किया। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से उन्हें पार किया जा सकता है। युवा समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं को चाहिए कि वे लैंगिक समानता, महिला सम्मान और सामाजिक न्याय के मूल्यों को अपनाएं। उन्हें ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए जिसमें किसी महिला को उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर सम्मान दिया जाए। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि विधवा महिलाओं को सम्मान, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर जीवन का अधिकार है। हमें ये समझना होगा कि विधवा होना किसी महिला की पहचान नहीं, उसकी पहचान उसके सपने, उसके संघर्षों, उसकी उपलब्धियों और उसके व्यक्तित्व से होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें संवेदनशीलता, समानता और मानवता का संदेश देता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि समाज का वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले। तो श्रोताओं, ये तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। 10:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम झूमते तराने।

कार्यक्रम का पहला झूमता तराना। कार्यक्रम का पहला झूमता तराना आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं फिल्म बागी से। स्वर है मोनाली ठाकुर का।

देवदास फिल्म का ये अगला झूमता तराना आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं श्रेया घोषाल व कविता सुब्रमण्यम व साथियों की आवाजों में।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

झूमते तराने कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनिधि चौहान और के युगल स्वरों में चुप चुप के फिल्म का ये अगला झूमता तराना।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

झूमते तराने कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला झूमता तराना कल होना हो इस फिल्म से

झूमते तराने कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये झूमते तराने कार्यक्रम का समय भी यहीं पर खत्म होता है। तो लेते हैं आपसे इजाजत और रहते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झूमते तराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम लोक रंग।

लोकरंग कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सारे श्रोतियां जो अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार राम राम ता कार्यक्रम लेकर ने हाजिर हो चुके ने श्रोताओं आए कने इस कार्यक्रम च आए तुहां जो सुनांदे आए छियाल छियाल पहाड़ी लोक गीत ता देर ना करदे हुए अज दे इस कार्यक्रम की शुरुआत करदे आए इस छियाल जिहा लोक गीत सौगी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: लोक रंग कार्यक्रम इस वक्त तुहें सुनदे आए आकाशवाणी हमीरपुर दे FM बैंड 101.8 MHz ते। उन कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत सुना

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वे जनता के समीप थे, जनता के सेवक के रूप में कार्य करते थे। राज्यपाल ने कहा कि वीरभद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका राजनीतिक कद इस बात से स्पष्ट होता है कि वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी कि उनके विचार और सोच हमें अपनानी चाहिए। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए लागत की 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के लिए विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव के आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में 1,963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशनधारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति के संवाददाता।
1: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 11:05 हुए हैं अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कजरी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जगजीत सिंह की आवाज है और संत कबीर का ये भक्ति पद है।

0: चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू कव्वाल की आवाज में ये कव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
3: ये हुस्न वाले भी कैसा कमाल।

0: जैनी बाबू कव्वाल और उनके हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान

0: 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

सूरज से मैंने समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोती रहो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी, किस लिए?

0: شکریہ مہر
1: केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। मेहदी हसन की आवाज में अभी आपने ये मांड गायकी सुनी और इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: रंग

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बज चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत।

देवधरा रे लोक गीत कार्यक्रम च तुहां सारिआं जां स्वागत करदे आए कन्नै अज्ज दे इस कार्यक्रम दा तुहां सुनना अपनी रेडियो दोस्त अस्मिता ने सौगी। तां देर ना करदे होए अज्ज दे इस कार्यक्रम दा शुरुआत करदे आए बलदेव सांख्यान दे गाए इस छाल जिहा लोक गीत सौगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देव धरा दे लोक गीत कार्यक्रम इस वक्त तुहें सुनते आए आकाशवाणी हमीरपुर ते कने उन कार्यक्रम दा अगला लोक गीत तुहां सुनवाना अच्छर सिंह परमार दे आवाज़ च

0: से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देवधरा दे लोकगीत कार्यक्रम इस वक्त तुम्हें सुन दे आए आकाशवाणी हमीरपुर दे एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम दा अगला लोकगीत आवा तुम्हें सुनवा दे आए मीना ललहाल दी आवाज़ च।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 12:30। अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। हर रोज की तरह हाजिर है लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सैनिकों के लिए, जिसमें होती हैं ढेर सारी, सुनवाते हैं आपको मीठे मीठे ढेर सारे गीत। तो देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रंग दे बसंती फिल्म के इस गीत के साथ। स्वर है दिलेर मेहंदी व साथियों का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वीर ज़ारा फिल्म का ये कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, स्वर है लता मंगेशकर और उदित नारायण का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और हरिहरन के स्वरों में। फिल्म का नाम है लम्हे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंत में सुनिए मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है खुदगर्ज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे? लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए मेरे साथ हैं भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा, आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्य धारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है और बहुत से गीतों में

कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्यधारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है और बहुत से गीतों में

0: कह दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

जी, तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं ये आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को। जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रूमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं, ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाते से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाते का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का ये रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

लता मंगेशकर और मन्ना डे को आपने सुना। फिल्म का नाम था श्री 420। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे सादे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर

पर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है। या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे। ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा। कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहाँ बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में। चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियाँ छतरियाँ लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो, कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए, जहाँ छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हम तो सुनाई नहीं, वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुनीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपकी कुछ गीत हमारे गीतों से हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं। यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं। छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, SD बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना? शामिल है ना?

टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहां तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है, उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि भई आज कुछ ऐसे गीत हैं जहाँ इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नज़दीकी, एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज़ मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रैली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, अच्छा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफ़र में निकल जाइए ना हमारे साथ, हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं कि सुरीले सफ़र में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं। हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहाँ पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की 2 पंक्तियाँ बोल दीजिए आप प्लीज़। क्या लिखा है आपने, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए। तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफ़िन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुँचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था। तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में

भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है, लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि। लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से। किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज़ बरसात दो घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मज़ा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज़ बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मज़ा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज़्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफ़र कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की भूल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

0: In West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over coastal Karnataka, Konkan, Goa, Odisha, and Telangana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा

0: व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
5: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
6: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3रे दिन भी बारिश हो रही है।
8: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

उंगली न दबा छुपने वाले सामने आ चुप चुप के मेरा जी न जला सूरज से किरण बादल से पवन कब तक छुपेगी ये तो बता छुपने

0: तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत SN त्रिपाठी का है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

गया चुपके चुपके।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान व अभियांत्रिकी, व्यापार व उद्योग, औषधि और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला शहर में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुनियोजित शहरी विकास और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में वाहनों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण यातायात नियंत्रण और पार्किंग प्रबंधन गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने आज शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में चालक परिचालक यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय दारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने पर सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के में हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, विकास कार्यों की धीमी गति और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहा है। वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री आवास ओकओवर से शुरू हुई ये मैराथन सीटीओ मार्ग से होते हुए इंदिरा गांधी खेल परिसर में संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने युवाओं से राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान प्रदेश के विकास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है कांगड़ा जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं विपन शर्मा, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
0: जून माह में कांगड़ा जिला लोकतांत्रिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए ग्रामीण विकास और जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार की रणनीति

0: को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली ही है। चंडीगढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया है। सरकार, प्रशासन, मीडिया और समाज के संयुक्त प्रयासों से नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई हुई है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पुनर्विकसित फवारा चौक और 11 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित ई बस चार्जिंग डिपो व अनुरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही धर्मशाला में 3 नए इंट्रासिटी ई बस मार्गों को मंजूरी दी गई। फवारा चौक के पुनर्विकास से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। धर्मगिरी पठियार स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने महाराणा प्रताप को त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठंडल स्थित सर्वधर्म पीठ तपोस्थान गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 420वें शहीदी दिवस पर 5 दिवसीय धार्मिक समागम का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया। उन्होंने नवनिर्मित दरबार साहिब भवन का उद्घाटन कर प्रदेश व देश के सुख समृद्धि की कामना की और गुरु साहिब की शिक्षाओं को आज के समाज के लिए प्रासंगिक बताया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये संयंत्र सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। यहां फ्लेवर्ड मिल्क, दही, लस्सी, पनीर, मोजरेला चीज, योगर्ट और खोआ जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 44 से बढ़कर 352 हो चुकी है और दूध संग्रहण 6200 लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 24000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गया है। धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला व सुधार उत्सव में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि टेली लॉ और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहलें दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही हैं। कार्यक्रम में न्यायिक सुधारों और विधिक जागरूकता पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जल निकासी व्यवस्था, जेसीबी मशीनों की उपलब्धता, खाद्यान्न भंडारण तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा। कांगड़ा जिले के 7 उपमंडलों में राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और धार्मिक स्थलों पर आपदा जैसे विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की तत्परता व समन्वय क्षमता का परीक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर में 9वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। विश्वविद्यालय को शैक्षणिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में देश में 4था स्थान मिला है। कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने इसे विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। धर्मशाला में आयोजित विशाल विधिक साक्षरता शिविर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विक्रमनाथ सहित देश के कई प्रमुख न्यायविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संविधान, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के संकल्प को दोहराया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहाँ बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
2: बिल्कुल। और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है। कई बुज़ुर्गों को पढ़ने में आँखों की कमज़ोरी के कारण परेशानी होती, तो उनके लिए ऑडियो बुक्स सबसे उत्तम है। यहाँ हज़ारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567, यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
2: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
1: जी।
2: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल। अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
2: और आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के ज़रिए या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
2: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल। बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फ़ोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन

0: लिखा है
1: जी
0: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
1: जी
0: अंग्रेजी में इसे ऐड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
1: जी
0: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना, बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है,
1: बिल्कुल
0: और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: बिल्कुल।
0: काम
1: पड़ोसी
0: करता
1: हो,
0: है।
1: चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है। लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: बिल्कुल। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो
1: बिल्कुल
0: जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो
1: बिल्कुल
0: बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर
1: बिल्कुल।
0: रहे हो, है ना।
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए। जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो
0: बिल्कुल।
1: अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
2: अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों, जुम्मन कहा
3: दुनिया का है डर, नजरों से नजर टकराते हो क्यों, जुम्मन कहा
2: मिलती है अगर नजरों

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए कि भाई आग में घी डालने
1: घी
0: वाली
1: डालना,
0: बात है।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आई लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज़ को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है, नमक मिर्च लगा के, तो वो चीज़ें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहाँ पर वहीं तक सीमित
1: बिल्कुल
0: रखें,
1: बिल्कुल,
0: जीवन
1: ये
0: में जहाँ
1: समझाने,
0: उपयोगी वहीं
1: जी
0: करें, है
1: ये
0: ना।
1: मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं,
0: समय हो चला है एक
1: एक
0: अंतराल
1: अंतराल
0: का।
1: का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है
0: बिल्कुल
1: ना
0: हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली।
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
1: अब बताओ तुम क्या करते
0: हैं? एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल
0: वाली है
1: आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी। देखो पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पर सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूँ चकिया धरना ये सारे जो
1: सब
0: काम
1: कुछ।
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्यौहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मज़ा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ, मैं ही कह रही
0: वाली
1: थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मज़ा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदें गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मज़े आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी,
0: सभी की
1: सभी के
0: है
1: घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहाँ पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीज़ें भी करना, वहाँ पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज़ का,
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मज़ा आता था। उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते, नहाना धोना कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर
1: बिल्कुल।
0: के करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उनकी
1: रात
0: यादों
1: में
0: में।
1: जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते हैं, अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयाँ बिछा लेते थे, तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: बिल्कुल। और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, और जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे
1: बिल्कुल
0: हवा, वो भी बहुत यादगार है।
1: बिल्कुल
0: और हमारे साथी क्या लिखते
1: बिल्कुल।
0: हैं
1: हमारे
0: बताओ।
1: एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नज़र में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में। बच्चे बड़ों की नज़रों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी हैं कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियाँ सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी

0: ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना
1: बिल्कुल
0: सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ। हमारी चार बहनों और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये
1: जी
0: गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था
1: बिल्कुल।
0: रात्रि।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थीं और अपने सुख दुख की बातें कहती थीं। यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे। आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे। और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें, ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की
1: बिल्कुल
0: जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता
1: जी।
0: लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताज़ा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता है ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो, एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में, यानी हमारे ज़माने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी। सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे,
1: बिल्कुल
0: और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे,
1: बिल्कुल
0: शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के
0: कर रहे
1: समझ
0: हैं।
1: लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज़ है वहाँ पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बीनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो
1: बिल्कुल
0: चुग रही हैं तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मज़ा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नज़रों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मज़ा है जो है आज भी
1: और हर मौसम का, हर मौसम का, चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मज़े करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहाँ जहाँ धूप जा रही है ना, वहाँ वहाँ पे कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब, मतलब खान पान से लेकर
1: जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का।
0: आनंद उठाते हैं गीत,
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया, हम
1: इस
0: लोगों को
1: आंगन में
0: भी
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी
0: अब हमें चलना चाहिए। तो
1: बिल्कुल। तो
0: सभी को मंजरी
1: और
0: वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क। और फिल्म थप्पड़। जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
1: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
2: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
1: जी,
2: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
1: जी।
2: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
1: ओहो,
2: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने, तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम ज़मींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
1: जी।
2: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
1: जी,
2: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
1: जी। जी,
2: ये 1984 का ज़माना था।
1: कितने बड़े थे आप?
2: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटा।
2: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस ज़माने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का ज़माना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे, तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
2: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
2: जो पान में सुपारी खाई
1: जी,
2: जाती
1: जी,
2: है
1: जी।
2: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी,
2: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था,
1: क्या
2: और
1: बात है?
2: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी, जी, जी।
2: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
2: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर,
2: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गज़ल बज रही थी, और वो गज़ल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात,
2: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीज़ा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गज़ल कोई गा रहा था, और इस गज़ल के साथ साथ मेरी गज़ल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गज़ल तो मैंने ज़ाय कर दी, मुझे याद नहीं है, उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
1: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे?
2: मैं, हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
2: मेरे
1: लगे।
2: अंदर का शायर जो
1: जी,
2: है
1: जी।
2: मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ।
1: जी, और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
2: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम हुआ करता था।
2: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गज़ल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गज़ल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गज़ल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गज़लें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी,
2: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गज़ल याद है?
2: गज़ल तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो ज़ाय कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गज़ल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
2: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो
2: बिल्कुल,
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से लिया आपने शायरी की।
2: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है
2: जी।
1: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
2: हाँ, वो सुना दें आप, मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
2: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए,
1: जी
0: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही।
1: जी
0: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
1: जी
0: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
1: जी
0: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके
1: माँ
0: बाप
1: से
0: के।
1: मिलता है
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं कैजुअली, तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था। तो ये प्रोसेस
1: चल
0: था,
1: रही थी बचपन से।
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
1: जी
0: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
1: जमा
0: थे,
1: हो रहे थे,
0: और
1: क्या
0: एक दिन
1: बात
0: वो
1: है।
0: फट गया
1: ओहो
0: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
1: जी
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
1: जी
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की।
1: जी जी जी
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ़ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
1: जी
0: इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
1: जी
0: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है।
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं, वो जो
0: महसूस करते
1: खरोचे
0: हैं।
1: होती है वो खरोच आपको
0: हाँ
1: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो
0: जी
1: आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी
1: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे,
1: वाह वाह वाह
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज़ है,
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को,
1: जी
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है।
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई
0: तो
1: बार,
0: दर्द हीरा है, दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया
1: वाह वाह वाह क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना
0: कर।
1: कितना

0: मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
1: नानी की
0: बताइए, कोई किस्सा
1: मोहब्बत
0: बताइए
1: है
0: नानी
1: मैं
0: का।
1: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
0: क्या बात है, ओह
1: हाँ, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एकाध वाकया ज़रूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस
0: ओह
1: ज़माने में टीबी लाइलाज था,
0: जी,
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो। और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती
0: क्या
1: थी
0: बात है, बहुत बढ़िया।
1: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से। और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी
0: जी
1: बहुत,
0: जी
1: और मैं पढ़ने में तेज़ था शुरू से।
0: हाँ
1: एक आध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था, जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
0: तेज थे।
1: बहुत तेज़ था मैं। हाँ,
0: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे
1: हाँ, सूरत में।
0: जी,
1: जी
0: सूरत में।
1: जी
0: तो वो क्या वाक्य है, ज़रा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था,
0: जी
1: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था वो, बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की,
0: जी
1: है ना?
0: शीनकाफ निजाम भी आए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: इसमें।
1: शीन काफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, वो उसका संचालन किया था।
0: जी
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
0: बिल्कुल, कुंडली
1: पता
0: आपकी पता है नहीं लेकिन अभी श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी
1: तो
0: बातें
1: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
0: जी
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीन काफ निज़ाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी
1: सब।
0: जी
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूँ समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी हिट
1: संदेशे आते हैं
0: गाने
1: है ना,
0: गाते रहते,
1: आए
0: बिल्कुल
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही ज़माना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो, प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फ़ोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी,
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
0: हाँ
1: दूसरे शहरों
0: उनको
1: से आए
0: बाद में
1: हैं,
0: रख।
1: और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है, तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे,
0: जी जी जी
1: तो उन्हें भी

0: ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी।
1: और उसमें खुद को
0: जावेद,
1: प्रूफ करने का भी समय
0: हाँ
1: था।
0: हाँ जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीन काफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहाँ पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर एक नावल लिखा है जो दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी, और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो करेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
1: क्या बात है
0: है ना।
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा था।
0: हाँ, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मिलती जुलती थी, तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नज़दीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस ज़माने में मुशायरों में तूती बोलता था,
1: बिल्कुल।
0: और ख़ास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी
0: उनको।
1: जी
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने, एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात
0: ठीक है।
1: है।
0: और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे, और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फ़ोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस ज़माने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी हैं वो।
0: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती हैं
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नज़र थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गज़ल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल ज़मीं का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल ज़मीं का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नज़र कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, नहीं करता।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था वो भी मैंने उन्हीं की नज़र कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद इरशाद इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब ख़त लिखते हैं, ख़तों खतूत का ज़माना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी ज़माना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं
1: जी,
0: मैं
1: जी।
0: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने जी।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: तो ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस ज़माने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और ख़ुद भी वो कविता लिखते हैं और गज़ल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात
1: हाँ,
0: तो नहीं पता थी।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है,
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत
1: नावेल
0: पढ़ते
1: और
0: हैं जी।
1: कहानियाँ बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गज़ल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गज़ल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गज़ल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के ज़रिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफ़र है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़, ये
1: भीड़
0: सब
1: और
0: तो
1: 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं।

0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था, तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे, तो
1: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ।
0: हाँ
1: व्हाट्सएप नंबर।
0: हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद,
1: जिद फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में ज़रूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने, ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया, है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली। उसके बाद जो है ये रिलीज हुई, रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला, है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है,
1: जी,
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र
0: हाँ
1: किया आपने।
0: हाँ हाँ
1: वहाँ
0: हाँ
1: पर जगजीत सिंह साहब ने एक
0: जी
1: गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज़
0: हाँ
1: थी।
0: जी हाँ
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गज़ल के मामले में गज़ल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी हाँ,
1: है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर हैं, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें,
0: हाँ,
1: उस गाना।
0: लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे छूता है गज़ल सिंगर वो हैं जगजीत सिंह साहब, और वो गज़ल बड़ी फेमस थी, तो उस गज़ल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे ज़िद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गज़ल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं, नहीं मतलब वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज़ मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज़ चाहिए मुझे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो, जैसे
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन अब वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी,

0: जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से
1: हाँ,
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
1: क्या
0: मतलब
1: बात है।
0: अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता यह था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना,
1: जी,
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र,
1: वाह,
0: ये पहली जो गज़ल थी ये फ़ायज़ अनवर साहब ने लिखी थी, फ़ायज़ भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र,
1: वाह,
0: ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गज़ल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, ये छोड़ देना है। ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी,
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए। तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है
1: रात कुछ ऐसे कटी है,
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह, क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
3: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिलों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। गुजरात के राजपीपला में सत्र

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बंटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दामदिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन पर 2-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। जी श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के उपरांत यानी 5:10 पर भजन संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ पहाड़ी भजन। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युव मंच सुनिएगा 5:30 पर। शाम 6 समय रहेगा प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सफर सुहाने, गाने नए पुराने। जी हाँ, इस कार्यक्रम में कुछ नए कुछ पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा शाम 6:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा 6:30 पर। शाम 7 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:05 पर। 7:25 पर समय रहेगा कार्यक्रम रौन का गराएं दिया का। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8 से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:45 तक। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा 9 News@9 अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:15 से लेकर 10 तक विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10 हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य जगत। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का समय रहेगा रात्रि 10:30।

देर रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भजन संध्या का। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं ये भजन जिसे गाया है कर्नैल सिंह राणा ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे बेटा, जीवन क्या बताऊं? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
7: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ। सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भजन संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं शेर सिंह का गाया हुआ ये पहाड़ी भजन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, भजन संध्या कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं जोगिंदर बल्ला की गाई माता रानी की ये भेंट।

जी श्रोताओ, जोगिंदर बल्ला की गाई माता रानी की इस भेंट के साथ ही अब आज का भजन संध्या कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवमंच।

युगमंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया। जी कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। तो आज फिर हम हाजिर हैं आप सभी को जानकारी देने के लिए और आज हम बात करेंगे डेथ एनिवर्सरी ऑफ साइमा प्रसाद मुखर्जी जी की। और देखिए कार्यक्रम में मनोरंजन भी हम आप सभी का करवाएंगे, फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उन्हें आमतौर पर राजनीति और राष्ट्रवाद के संदर्भ में याद किया जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और वैचारिक राजनीति की एक नई नींव रखी। आज 23 जून को उनकी पुण्यतिथि है। और देखिए दोस्तों, वे एक प्रखर शिक्षक, महान बैरिस्टर और स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे। दोस्तों, उन्होंने एक देश में दो विद्वान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का नारा देकर कश्मीर को भारत का पूर्ण अंग बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बुद्धिमत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे केवल 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बन गए थे। उनका कार्यकाल 1934 से 1938 के दौरान ही महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को बंगाली भाषा में संबोधित किया था, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव था। दोस्तों बता दें कि देश आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी पहली कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया था। हालांकि साल 1950 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ तो डॉक्टर मुखर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया। वे पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। वो आजाद भारत के पहले ऐसे मंत्री थे दोस्तों जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। देखिए, नेहरू कैबिनेट से अलग होने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की और यही जनसंघ आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। बता दें कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये ऐतिहासिक नारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के विरोध में दिया था। और ये भी बता दें कि उन्हें मुख्य रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत केसरी और प्रखर राष्ट्रवादी जैसे उपाधियों से आज भी याद किया जाता है। और देखिए, 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम में आपको और भी जानकारियां हम देंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम युव मंच में। युवा दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में। देखिए दोस्तों, हर साल 23 जून को ये दिवस मनाया जाता है और एक वैश्विक जागरूकता दिवस ये है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विधवाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों में रहने वाली विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी, हिंसा, सामाजिक कलंक और अन्याय की अदृश्य आपदा पर प्रकाश डालना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। देखिए, ये दिवस लुम्बा फाउंडेशन द्वारा 2005 में शुरू किया गया था, जो 23 जून की तारीख इन्होंने इसलिए चुनी कि क्योंकि 1954 में इसी दिन फाउंडेशन के संस्थापक लॉर्ड लुम्बा की मां विधवा हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव पारित करा और 23 जून को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा किया और पहली बार 2011 में इसे मनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे संपत्ति से बेदखली की। तो देखिए, कई समाजों में महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति या जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, जिससे वे बेघर हो जाती हैं। दूसरा, गंभीर गरीबी। जी, विरासत और संपत्ति के अधिकारियों की कमी के कारण वे अत्यधिक गरीबी में जीने को मजबूर हो जाती हैं। साथ ही साथ सामाजिक बहिष्कार की बात करें तो कुछ रूढ़िवादी संस्कृतियों में उन्हें अपशकन माना जाता है या प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। साथ ही इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो न्याय और सम्मान करना, आर्थिक सशक्तिकरण बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, और साथ ही संपत्ति का अधिकार करना और सामाजिक सुरक्षा करना। तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा हम आपको और भी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ज्वेलर्स कश्मीरी कॉम्प्लेक्स अपर बाजार हमीरपुर 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक यहां हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युप मंच। युवा दोस्तों, आइए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की। देखिए दोस्तों, ये दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है और बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में लोक सेवकों के योगदान को सराहने, उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। और साथ ही इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए, विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के महत्व को उजागर करना और सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। और साथ ही देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार की बात करें तो इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन लोक सेवकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाता है जो नवीन सेवाओं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में असाधारण योगदान देते हैं। तो युवा दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में जनजातीय विकास व बागवानी विभागों की बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में चालक परिचालक यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के लिए हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
3: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
0: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने आज शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और सफ़र से जुड़ी और गीतों से जुड़ी बहुत सारी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात तो हम सब मानते हैं कि बिना मधुर गीतों के कोई भी सफ़र सुहाना नहीं हो सकता। लेकिन सफ़र सिर्फ वो नहीं होता जो हम सड़कों पे या फिर पहाड़ों के मोड़ों पर या गाड़ियों में तय करते हैं। एक सफ़र वो भी होता है जो इंसान के अपने भीतर होता है। यादों का सफ़र, बीती बातों का सफ़र और किसी की चाहत में खुद को ढूंढने का सफ़र। तो दोस्तों, आप भी उठाइए अपने ख्यालों का झोला, थामिए यादों की उंगली और चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफ़र पर। सुनते हैं दिल के रास्तों को छूता हुआ ये बेहद सुरीला गीत।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
10: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
9: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
10: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
9: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
10: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
11: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
12: जी दोस्तों, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ना, उसके बोल साफ साफ ये कहते हैं कि जब आप सफर पर निकलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद चलने लगते हैं, और चलने के साथ साथ ये हमें संदेश भी देते हैं कि हर मोड़ पर कोई ना कोई खूबसूरत नज़ारा और नई सीख आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलिए शान के साथ हम भी चलते हैं गानों के इस खूबसूरत सफ़र पर।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।

0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
2: जी हाँ दोस्तों, सफ़र चाहे मीलों का हो या ज़िंदगी का, अगर साथ में अच्छे हम सफ़र और कानों में मधुर संगीत हो ना, तो रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। गाड़ी की खिड़की से पीछे छूटते पहाड़ और पेड़, चेहरे को छूती हुई ठंडी हवा और बैकग्राउंड में धीमी आवाज़ में बजता कोई प्यारा सा नगमा, ये वो एहसास है दोस्तों जो किसी भी आम यात्रा को एक खूबसूरत सफ़रनामा बना देता है और संगीत रास्तों की थकान को भी सुकून में बदल देता है।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। सफ़र चाहे कैसा भी हो, अगर हम सफ़र अच्छा हो और ख़ूबसूरत गीतों का साथ हो तो हर सफ़र सुहाना ही होता है। जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि राही नए नए रास्तों पर चलते चले जाते हैं, सुर और ताल मिलकर सफ़र को सुहाना बनाते चले जाते हैं। और हम भी इस वादे के साथ आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं कि आपके सुर और ताल और सफ़र को हमेशा खूबसूरत बनाने का वादा करते हैं। तो आज के इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं। अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को अब दीजिए इजाज़त। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, शाम के 6:30 होने को हैं और आज प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी लाइव फोन इन कार्यक्रम रहेगा। और हमारा आज का विषय है टमाटर, बैंगन, तेज मिर्च के रोग व उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। और विशेषज्ञ इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, और इनसे बातचीत करेंगे राजीव सुमन। तो यदि आपका भी संबंधित विषय से कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2231-22 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जी हाँ, कार्यक्रम है किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी तुहंदे घर द्वार सुनने वाले अहां दे नियमित श्रोता, अहां दे किसान कने बागवान भाई बहनों का इस कार्यक्रम च स्वागत करदे। और जियां दे अहां दे श्रोता जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन है और अहां आज संजीव इस कार्यक्रम च तुहां कने उपस्थित है। और विषय तो तुहां जो पता ही है, अहां दे का जो विषय है से अहां दे सब्जी उत्पादक भाई बहनों वास्ते हैं, जिन्हें जो अपने खेतरां च टमाटर, बैंगन कने हरी मिर्च जी असें लगाई, तो क्या क्या इस रोग लग सकते, क्या क्या इस चाह प्रबंधन कर सकते, इस विषय पर जानकारी देने वास्ते आज स्टूडियो इस टाइम मौजूद है डॉक्टर मोनिका जी। तुहां सह प्राध्यापक है औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर च, और तुहां पादप रोग विज्ञान च जी असें कार्यरत है। तो इस जानकारी वास्ते अगर अहां दे किसान कने बागवान भाई बहनों का कोई प्रश्न है, कोई तिना दी समस्या है इस दे संबंधित, तो सह अहां कने लाइव इस कार्यक्रम च जुड़ सकते। अहां दा फोन नंबर रहना 2231 और एरिया कोड तुहां जो पता ही है 019-72। तो तुहांदे फोन कॉल का भी इंतजार रहना। और सब तो पहले इस कार्यक्रम च स्वागत करदे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका जी का। मैम, तुहांदा इस कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत है जी।
7: धन्यवाद जी, और नमस्कार, और सभी किसान भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार
6: जी। तो मैम जी, हाँ जी, हाँ गल कर रहे थे कि यहाँ के सब्जी उत्पादक भाई बहन जैसे कमर्शियल तौर पर जैसे टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च जैसे बहुत उत्पादन कर दे, और डोमेस्टिक च भी अहाँ अपने कैरियर च भी इन्हें चीज़ों लगा दे। तो कुछ अहाँ तुहां ते जानकारी जानना चाहते कि ये जो समय है, तो इस समय अहाँ दे से जे पनीरी है से लगभग लोगों जी से लगाई हो, तो अगे से रुपाई का भी टाइम आना, तो क्या क्या अहाँ जो सावधानियाँ पनीरी से रखनी चाहिए और रुपाई का टाइम जैसे कल तक आना जी।
7: जी देखिए, अभी तक ज़्यादातर किसान भाई बहनों ने जो है पनीरी जो है वो डाल दी होगी, लगा दी होगी
6: जी।
7: और अगर कोई किसान भाई बहन है जो थोड़ा लेट हो गया होगा तो वो आजकल में लगाने की तैयारी में होगा। इस टाइम पे जिन्होंने पनीरी लगा दी होगी, तो जिनकी पनीरी जब हम खेत में लेके जाते हैं तो तकरीबन हमारी जो पनीरी है वो 35 से 45 दिन के बीच में होनी चाहिए इन फसलों की। तो अभी जैसे अभी बरसातें जब थोड़ा सा बारिश हो जाएगी, थोड़ी मिट्टी में नमी आ जाएगी और पौध जो है वो तकरीबन 35 से 45 दिन की हो जाएगी, उस टाइम पे ज़्यादातर किसान भाई बहन जो है वो अपनी पौध को अपने खेत में लेके जा सकते हैं, अपने खेत में उसको उसकी रोपाई कर सकते हैं
6: जी।
7: जी
6: जी, डॉक्टर मैम एक फ़ोन कॉलर जुड़ा था, इन्होंने गलबात कर लेंगे
7: जी।
6: हेलो,
8: नमस्कार
6: जी, कौन बोल रहे जी?
8: मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर अमित। मैंने एक पूछना था डॉक्टर साहब से, एक दो उसके टोमेटो के ऊपर ना थोड़े से वो पौधे लगाए थे, उसमें थोड़ा सा वो क्वेश्चन था उसके ऊपर।
6: जी जी जी
7: जी, बोलिए।
8: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार जी, बोलिए।
8: एक ना कुछ पौधे लगवाए, मैं अमित बोल रहा हूँ।
7: जी जी, बोलिए।
8: कुछ पौधे लगाए हुए थे ना
7: जी,
8: क्या नाम,
7: टमाटर के जी,
8: तो उसमें ना थोड़ा सा ब्राउनिश सा आया स्टेम पे और पत्ते भी मुड़ गए हुए हैं, और पत्तों पे जैसे पेल येलो सा कलर हो गया हुआ है, तो आप थोड़ा उसके बता सकते हैं किस चीज के सिम्टम्स हैं वो और कैसे उसकी रेमेडी की जाए?
7: जी देखिए, टमाटर पे जो ये पत्तों के ऊपर जो धब्बे पड़ते हैं, दाग पड़ते हैं, और उसके बाद अगर आपका टमाटर का पत्ता जो है वो या तो पूरा पीला पड़ के गिर रहा है या उसके ऊपर धब्बे हैं, दोनों अलग अलग बीमारियों की वजह से होते हैं। अगर आपके पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ रहे हैं और उसके तने के ऊपर भी अगर कोई बीमारी, तने के ऊपर भी अगर ऐसे कोई दाग से उसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये आपकी या तो एक फफूंदी का नाम है अल्टरनेरिया, उसकी वजह से आता है। तो उसके लिए आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, या तो आप कार्बेंडाजिम की या आप मैनकोजेब की स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो हेक्साकोनाजोल या डाइफेनाकोनाजोल की भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है वो 10 दिन के अंतराल पे, और अगर इंटेंसिटी कम है तो आप 15 दिन के अंतराल के बाद उसकी दूसरी स्प्रे कर सकते हैं।
8: जब एक तो टमाटर ग्रीन होता है ना, तो उसपे भी थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया हुआ है, थोड़ा सा पेल येलो कलर में, वो क्या कोई ब्लाइट वगैरह?
7: देखिए, अगर आपकी हरे फलों के ऊपर अगर आपके भूरे रंग के दाग पड़े हुए हैं और आपके क्षेत्र में नमी बहुत ज़्यादा है, तो वो बकाई रॉट की वजह से होता है। ज़्यादातर इस एरिया में वो बीमारी कम आती है, बट अगर आपने सिंचाई आपने ज़्यादा की हुई है तो ये बीमारी आने की संभावना है। तो उसके लिए आप जो है वो रीडोमिल गोल्ड की आप स्प्रे कर सकते हैं। उसकी आप 7 से 10 दिन के अंतराल के ऊपर उसकी 2 स्प्रेस कर सकते हैं।
8: एक पौधे का पत्ता तो ग्रीन था, वो आगे से ब्राउनिश में मोल्ड हो गया। मैं कांगड़ा से बात कर रहा हूँ।
7: अच्छा, आप देखिए, या तो आप ऐसे आप कई तरह के बता रहे हैं उसमें सिम्टम्स ना, ब्राउन भी बता रहे हैं, मुड़ा हुआ भी बता रहे हैं, तो एक बारी अगर आप उस पत्ते का जो है आपके आसपास जो KVK है या जो और सेंटर्स हैं, एक बारी वहाँ दिखा दें, या उसके हमारी यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे अगर आप उसे शेयर कर देंगे फोटो को, तो फिर ज़्यादा अच्छे से आपको बताया जा सकता है।
8: जी ठीक है। एक मैं तो थोड़ी चिंता इसलिए हो गई थी कि उस पे थोड़ी सी ना जैसे वाइट कलर की फंगस लगी होती है, तो वैसी आ गई थी।
7: नहीं, वो मतलब आप कई तरह के लक्षण बता रहे हैं ना, तो ये एक बारी ढंग से जांच करने के बाद ही उसका हम हल बता पाएंगे।
6: जी थैंक यू मैम। अमित जी, फोन करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद जी।
8: थैंक यू सर।
6: धन्यवाद जी। जी, अमित जी थे कांगड़ा थे और इन्होंने प्रश्न किए, और मैं समझता कि इन्होंने प्रश्न का पूरा इन्हें जो सेटिस्फेक्शन हुई होनी कि क्या क्या समस्याएं हैं, और तुम बड़े अच्छे तरीके ने सारी गलबात की। तो आहाँ गल करा रहे मैडम कि पनीरी जी ऐसे इस टाइम लगाई है, और पनीरी से क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहती, इस बारे से जी ऐसे गल करा रहे, तो अहाँ ये जानना चाहते कि जो अहाँ पनीरी है तो गलाया कि अहाँ जो इससे सावधानी बरतनी चाहती, तो क्या पनीरी से भी कोई बीमारियां लगने की संभावना रहती
7: है? पनीरी में एक बहुत ही भयंकर बीमारी, भयंकर इसलिए बोलूँगी क्योंकि जैसे ही अगर ये आ जाती है तो ये पूरी पौध में 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो फैल जाती है और हमारी सारी पनीरी को खराब कर देती है। इसको हम बोलते हैं कमर तोड़ रोग। हाँ जी, कमर तोड़ रोग। इसमें क्या होता है कि जो पनीरी है वो मुरझाएगी, और उसके बाद जहाँ पे उसका जो तना है, जहाँ पे वो मिट्टी के साथ टच करेगा, वहाँ से उसके चारों तरफ भूरे निशान पड़ेंगे, वहाँ से वो पतला हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और वहाँ से वो गिर जाएगी पनीरी।
6: जी, जी, जी।
7: और ये धीरे धीरे जो है जैसे पैचेस में शुरू होती है, और वो धीरे धीरे पैच जो है वो आगे तक बढ़ता जाएगा। 2 लक्षणों में होती है एक, लेकिन अभी जो अभी की नर्सरी की स्टेज होगी ज़्यादातर किसान भाई बहनों की, उसमें अभी तक पौध निकल आई होगी, और निकलने के बाद फिर जो है वो मुरझाने के उसमें समस्या होती है।
6: अच्छा।
7: तो इसके लिए रोकने के लिए एक तो किसान भाई बहन सिंचाई करें, पर हल्की सिंचाई करें। अगर किसान भाई बहन ज्यादा सिंचाई करेंगे तब ये बीमारी जो है वो ज्यादा फैलेगी। आप हल्की सिंचाई करें, हल्की, अगर जरूरत है, धूप अगर वहां ज्यादा पड़ रही है तो आप दिन में 2 बार कर दीजिए, पर हल्की कीजिए। ज्यादा सिंचाई करेंगे तो ये जो बीमारी है ये आगे बढ़ेगी। और उसके बाद आपको इसमें अगर बीमारी इस तरह से अगर लक्षण दिख रहे हैं आ गई है, तो आप इसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बेविस्टिन 0.1% और मेनकोजेब 0.25% का घोल बना के इसकी आपने ड्रेंचिंग करनी है, और जहाँ पे आपके ये जो पनीरी मुरझा रही है उसके वहाँ पे तो करनी ही है, उसके आसपास की थोड़ी सी और मिट्टी में भी आपने करनी है, क्योंकि इस बीमारी के जो फफूंदी होते हैं 3-4 तरह के होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं, और वो मिट्टी में पानी के साथ धीरे धीरे आगे फैलते जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पनीरी को खराब कर देते हैं।
6: जी बिल्कुल। एक फोन कॉल अटेंड कर लेते हैं मैडम जी। हेलो
9: हेलो।
6: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे?
9: नमस्कार जी, मैं प्रयागराज शर्मा बोल रहा हूँ जी, सरका घाट से।
6: जी प्यालाल जी, तुम इस कार्यक्रम जो सुना दे बने विषय भी तुम जो पता होना, अगर तुम तो कोई इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो डॉक्टर मैडम सुना दे जी। बोला जी,
9: मक्की की फसल में ना पौधा अभी कोई 7-8 इंच हुआ है,
7: मक्की
9: में पत्तों में बीमारी आ गई है, पाउडर जैसा बन रहा है पत्तों के ऊपर, तो उसके लिए क्या किया जाए? अभी तो थोड़े में है, फिर पूरे खेत में हो जाएगा, तो इसमें क्या दवाई स्प्रे करनी चाहिए?
7: अच्छा, आपके पत्तों पे भूरे रंग के धब्बे, कैसे क्या बताया आपने?
9: मक्की
7: पे। हाँ, कौन से कैसे पत्तों पे क्या हो रहा है?
9: पत्तों पे ना
7: हाँ जी?
9: पाउडर जैसा आ रहा है, मतलब कीड़ा लगा हुआ है उसमें, पाउडर पाउडर आ रहा है पत्तों के ऊपर, मक्की के पत्तों के ऊपर। अच्छा। अभी पौधा जो है वो सिर्फ 7 और 8 इंच के
7: इंच के आसपास है। तो जो पाउडर है वो कौन से रंग का है?
9: वही हरे जैसे रंग का है।
7: हरे जैसे रंग का है?
9: हाँ, पर मैंने वो कीड़ा तो देखा नहीं, उसमें फोल्ड जैसे हो जाते हैं ना, और काट दे रहा है पत्ते को।
7: हाँ, ठीक
9: और
7: है।
9: लास्ट पिछले साल भी ऐसा हुआ था, फिर वो पूरे खेत पूरा खेत खत्म हो गया था।
7: आपने पिछले साल को इससे दवाई की थी?
9: हाँ, दवाई भी की थी, पर उससे कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा कंट्रोल हुआ था। हाँ,
7: आपने जो दवाई की थी ना, आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया होगा पिछले साल, तो आपने हाँ, पिछले साल जब आपने किया तब तक वो बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो ऐसे जो हाँ, पौधे हैं, आप इनको अगर कम पौधों पे है तो इन पौधों को आप एक तो उखाड़ के दबा दीजिए, ऐसे उखाड़ के साइड पे मत फेंकना, इनको दबा देना। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा है, आप नहीं उखाड़ पाएंगे, तो आप जो है जितना जल्दी आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करेंगे, उतनी आपकी जो बीमारी है, उतनी जो ये आपके कीट है, वो रोकने में वो ज्यादा सक्षम होगा। ठीक है, तो आप उसकी स्प्रे अभी जल्दी शुरू कर दीजिए, जैसे ही अभी आपकी ये शुरू ही हुआ है इन कीटों का।
9: कौन सा स्प्रे करना चाहिए इसके लिए?
7: देखिए, वैसे तो इसमें हमारे जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो इसमें स्प्रे करते हैं, जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है, जो सिस्टेमिक हो वो वाली आपने करनी है इसमें स्प्रे।
9: ठीक है, यहाँ लोकल तो मतलब जो दे देते हैं उनको, हम अपनी परेशानी बताते हैं ना, तो दे देते हैं, पर स्पेसिफिक कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है लिक्विड में जो स्प्रे से कंट्रोल हो जाए?
7: अगर आपके पास वहाँ पे केवीकेस वाले हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं,
6: और तो हर ब्लॉक जैसे आंधे एग्रीकल्चर में बैठते हैं।
7: हाँ जी, अगर आप
9: उनको भी बताया था लास्ट ईयर, वो आए भी थे।
7: हाँ जी, तो उन्होंने जो आपको उस टाइम पे रिकमेंड की थी ना दवाई, अगर आप वो टाइम से डाल लेंगे और उनके रिकमेंड
9: समय है तो एक और प्रॉब्लम है, और वो मक्की के खेत में ही ना, मतलब जैसा वो मलोरी नहीं होती, मलोरी टाइप जो घास
6: ऐसा ना। प्याजन जी, आज सहजे विषय है सर, वैसे हमारा टमाटर बैंगन और हरी मिर्च के बारे से था, और मैडम ने जितना यथासंभव था से तो हमारा प्रश्न सॉल्व करते थे।
7: सब्जियों से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कोई भी पूछ सकते हैं, इनके अलावा भी अगर कोई है, इन सब्जियों के अलावा भी अगर आपका कोई है तो आप, मैं कोशिश करूंगी उसका उत्तर देने की।
6: चलो जी, तुम फोन किते बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आंदा एक मशवरा रहना कि जितना भी आंदा अगर मक्की से संबंधित कोई समस्या है तो है अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र च या आंदे ब्लॉक च भी जी ऐसे अधिकारी बैठ दे, तिना ने भी यहाँ गलबात करी सकते जी, है ना।
9: धन्यवाद।
6: ठीक है, धन्यवाद जी फोन करने वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी प्यारचंद जी थे, और मैडम प्रश्न थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी तो हाँ जी ऐसे इस प्रश्न का उत्तर देते, इस वास्ते तो बहुत धन्यवाद।
7: हमारे एक्चुअली हम सारे अलग अलग विशेषज्ञ होते
6: बिल्कुल,
7: हैं, तो ये हम जो हैं वो रोगों के हैं, और जो इसका जो सही जो टेक्निकली जो ऑथराइज्ड है उत्तर देने के लिए, वो जो है वो हमारे कीट विशेषज्ञ होते हैं।
6: तो मेरा आग्रह रहना हमारे श्रोताओं ने ऐसे जी इस कार्यक्रम जो सुना कर दे, कि अगर कोई सब्जी उत्पादन से संबंधित, खासकर हमारा टमाटर बैंगन और शिमला मिर्च की यहाँ गल करा दे, हरी मिर्च की गल करा दे, तो इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न है, तो इससे क्या क्या रोग लगते, किस तरीके ने जो इसका प्रबंधन करना, इस विषय पर कोई प्रश्न है तो जरूर तुम इस फोन करीने जे इस प्रश्न का समस्या का समाधान जैसे पाई सकते। तो डॉक्टर मैम अह गल करा रहे कमर तोड़ रोग दी, सजे पनीरी च जी ऐसे लगती, और तुम इस वास्ते जी ऐसे बताया कि सिंचाई जी ऐसे टाइम टाइम पर करते रहो, लेकिन थोड़ी इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, और भी तुम कुछ थोड़ी बहुत इससे जैसे उपचार वास्ते गल करा दे
7: जी। इसके अलावा नर्सरी में अभी कई बार क्या होता है कि नर्सरी में हमारे जो वायरस का इन्फेक्शन भी शुरू हो जाता है, और वो जब हम अपनी पौध को जब हम खेत में लेके जाते हैं तो वहाँ पे वायरस के इन्फेक्शन आने के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं।

0: हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले देते हैं, वो टनल जैसी होती है ऐसे ऊपर से आधा चंद्रमा आधी गुलाई वाली, वो उससे ढक के रखें। और अगर लगता है कि कोई कीड़ों का इन्फेक्शन उसमें आ रहा है तो आप उसमें जो है इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मेलाथियन हो गया, मेटासिस्टॉक हो गया, इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं
1: जी।
0: या इमिडाक्लोरोपिड हो गया।
1: जी बिल्कुल, लेते हैं थोड़ा रासायनिक, अगर कोई प्राकृतिक उपचार कोई करना चाहता तो इससे भी यहाँ कुछ छेड़ी व्यवस्था कर सकते हैं।
0: जी देखिए, प्राकृतिक के लिए अगर हमने अगर हम बीमारियों को रोकने की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो है गौमूत्र अगर कोई बना सके तो जीवामृत, अगर जीवामृत नहीं बना सकते तो गौमूत्र का, गौमूत्र पुराना गौमूत्र होना चाहिए, 5 से 7 दिन पुराना गौमूत्र, उसकी स्प्रे करें 10% के हिसाब से
1: जी।
0: और अगर ड्रेंच, अगर आपकी कमर तोड़ रोग आया है तो आप उसको उसकी आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपकी इस कमर तोड़ रोग रोकने में मदद करता है। और जहां तक कीड़ों की बात रही तो कीड़ों के लिए अगर हम प्राकृतिक कृषि की बात करें तो हम नीम के पत्तों की स्प्रे कर सकते हैं, पर नीम यहाँ पे ज़्यादा कॉमनली मिलता नहीं है, तो थोड़ी सी पनीरी थोड़ी सी जगह में लगती है, तो उसके लिए हम जो है वो मिर्च का पाउडर, मिर्च का पेस्ट बना के उसकी हम जो है 1% के हिसाब से अगर स्प्रे करेंगे तो उससे भी हमारे काफ़ी कीड़े जो हैं वो हमारी फसल से दूर हो जाते हैं।
1: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम वहाँ से जानना जरूर चाहते क्योंकि यहाँ एक गलत करी ली कि पनीरी च क्या क्या सावधानियाँ बरतनी और पनीरी च जो कोई भी बीमारी है तीसरा उपचार किया करना क्या क्या लक्षण ऐसे तुम दस्या हूँ आँधी पनीरी जी ऐसे लगभग तैयार होने दे कागार पर है तो रुपाई करना यानी कि पनीर दी पौध जो जैसे उन रुपाई वास्ते जो ले जाना तक क्या उचित टाइम है और क्या क्या उस टाइम जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
0: जी देखिए, जब आपकी पनीरी 35 से 45 दिन के बीच में हो गई और खेत में नमी है तब आप अपनी पनीरी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप खेत में लेके जा सकते हैं
1: जी।
0: पनीरी जो आपने लगानी है वो स्वस्थ पनीरी स्वस्थ पौधों को ही आप आगे लेके जाएं। और अगर आपकी पनीरी में ये कमर तोड़ रोग आया था तो पनीरी को खेत में लगाने से पहले एक बार ये जो बेविस्टिन और मैनकोजेब का जो घोल है इसमें अपनी पनीरी को 10 मिनट के लिए इस घोल में डुबोएं और उसके बाद आगे लेके जाएं, ताकि आपकी जो अगर इस फफूंदी के कण अगर मिट्टी में या जड़ों में हैं तो हम उसको वहीं पे रोक दें, वो हमारे खेत में ना जाएं।
1: मतलब तो कमर तोड़ रोग अगर है उसका उपचार भी कर लिया,
0: फिर भी आप लेके जाएं, क्योंकि कहीं जब तक लक्षण आते हैं, लक्षण बाद में आते हैं, उससे पहले इन्फेक्शन जो है वो सिस्टम में होता है। जैसे हमें भी जब बीमारी होती है जब तक लक्षण आते हैं तब तक हमें इन्फेक्शन हो चुका होता है, तो वही पौधों का भी हिसाब है। अगर पौधों में आपकी कमर तोड़ रोग आया है, आपने ड्रेंचिंग कर दी है, फिर भी आप आगे जब उसको लेके जा रहे हैं स्वस्थ पनीरी को, तो आप उसको एक बारी इस बेविस्टिन और मैनकोजेब के घोल से ज़रूर उपचारित करें। कार्बेंडाजिम और बेविस्टिन का घोल है, कार्बेंडाजिम अलग अलग नामों से आती है, उसमें आप उसको डुबो के फिर ही अपने खेत में लेके जाएं।
1: जी
0: जी,
1: तो डॉक्टर मैम जी जी हाँ गल की कि हाँ इससे क्या क्या सावधानी बरतनी से सारी गल दसी हूँ हाँ क्रमवाइज थोड़ा इससे आँदे क्योंकि पनीरी के बाद हाँ जब रुपाई करी थी तो रुपाई के बाद जाली जो पौधे की बढ़वार शुरू होंगी तो कुछ ना कुछ बीमारियाँ तो इससे लगदी हैं, खासकर अगर अहें टमाटर की गल करिए, बैंगन की गल करिए या हरी मिर्च की गल करिए, तो टमाटर तो शुरू कर दे और आँधे से जो श्रोता आँधे से जो कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता थे तिन्हें भी एक प्रश्न किया इस बारे तो सारी जानकारी दी, लेकिन अगर कोई और इससे तुम जो लगता कोई और बीमारी लगने की संभावना है तो ऐसा क्या है, क्या लक्षण है और क्यों उपचार करना।
0: जी देखिए, हमारे इस यहाँ
1: इस प्रश्न जो थोड़ा कंटिन्यू कर दे, एक फोन कॉलर जुड़ा है, इन्हें गल कर लें दे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार सर, एक क्वेश्चन पूछना था मैंने वो मैम से, क्या हो सकती है बात?
1: कौन बोल रहे हैं जी?
2: मैं डॉक्टर अमित बोल।
1: अच्छा अमित जी, अभी आहां दे और भी श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते थे, इन्हां दा प्रश्न भी रही है ना।
2: डॉक्टर अमित बोल रहा हूँ
1: जी। तो इस जानकारी जो ना चाहते हैं कि और कोई कोई की बीमारियां इससे अगर लग दिया।
0: देखिए टमाटर में हमारे यहाँ पे एक जैसे मैंने पिछले कॉल पे बताया था पछेता झुलसा रोग लगता है
1: जी जी।
0: इसमें पत्ते के ऊपर जो है भूरे रंग के चक्कर कार के तरह के धब्बे पड़ते हैं, हाँ जी, जैसे निशानेबाज में वो एक गोल गोल रिंग्स वाला होता है, बिल्कुल वैसे ही इस पे भी धब्बे पड़ते हैं और ये धब्बे बाद में बड़े होते हैं और पत्तियां जो है वो मुरझा जाती है, वो पत्तियां जो है वो समय से गिर जाती हैं। और इसमें एक और लक्षण आता है, वो भी एक और बीमारी आती है, वो भी फफूंदी की वजह से होती है, जिसमें कि जो धब्बे होते हैं वो अंदर से हल्के सलेटी रंग के होते हैं और उनके किनारे जो हैं वो भूरे रंग के होते हैं। इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए हमें

0: है वो फंजीसाइड की स्प्रे करनी है। फंजीसाइड आप बेविस्टिन, आप कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या आप डाइफेनाकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल की स्प्रे कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो है यहाँ पे जो एक और बीमारी आती है उसमें मुरझान रोग आता है। मुरझान रोग हमारे दो तरह के होते हैं, एक में क्या होगा कि आपका पत्ता पहले पीले हो जाएंगे और पीले होने के बाद फिर मुरझाएंगे, और दूसरा आता है कि जिसमें पहले आपका पौधा मुरझा जाएगा उसके बाद पत्ते पीले होंगे।
1: जी।
0: तो ये जो जिसमें पत्ते पीले हो जाते हैं ये एक फफूंदी की वजह से होता है। इसको रोकने के लिए हमें स्प्रे इसमें इफेक्टिव नहीं होगी, इसमें हमें ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, और ड्रेंचिंग हम जो है किसी फंजीसाइड की कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा है जिसमें कि पहले मुरझान आएगा और फिर पत्ते बाद में पीले होंगे, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके लिए हमें बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है वो उसमें हमें करनी पड़ेगी, उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है या तो आप उसमें ब्लाइटॉक्स की ड्रेंचिंग कर सकते हैं जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है नाम है, कमर्शियल नाम है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी अलग अलग नामों से आता है, आप उसकी ड्रेंचिंग करें। और अगर आपके ये मुरझान रोग आता है तो किसान भाई बहन अगर बड़ा सावधानी की बात ये रखने की ज़रूरत है कि उस खेत में अगले साल वो फसल ना लगाएं, क्योंकि ये जो है ये फसल इसके जो चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो ये खेत में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, और जब आप एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार लगाएंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और हमारी बीमारी जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो आप फसल चक्कर अपनाएं, कम से कम जहाँ पे वैसे बैक्टीरिया वाला आता है कम से कम 3 साल का, और जहाँ पे फफूंदी का आता है वहाँ पे 5 से 7 साल का आप फसल चक्कर अपनाना चाहिए। जी, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी जो है वो खेत में आई है, और बड़ा मुश्किल होता है कि इतने बड़े जब बीमारी हमारी मिट्टी में है तो इतनी बड़ी जगह से उसको निकालें। अगर बैक्टीरिया की वजह से आती है तो वहाँ पे आप किसान भाई बहन ये कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर अगर आपने वैसे तो जब आपकी फसल लगाने से पहले आपको ब्लीचिंग पाउडर जो है वो अप्लाई करना है, तकरीबन 1 किलो पर कनाल, 1 कनाल के हिसाब से आपने ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करना है, उसके बाद आपने पानी लगाना है, और 7 से 10 दिन के बाद फिर आपने जो है अपनी पौध जो है वहाँ पे उसका पौध लगानी है। और अगर आप अगर आपकी फसल लग गई है और फिर बीमारी आ रही है तो अगर आप तब ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो वो फिर आपकी फसल को भी जो है वो हानि पहुँचा सकता है।
1: तो डॉक्टर मैम तुम बड़े विस्तार पूर्वक जो ऐसे टमाटर से क्या क्या रोग लगने की संभावना है किस तरीके ने उपचार करना चाहते वहाँ बड़े डिटेल से दस्या, और उन्हें ये गल करना चाहते कि आहदे से जो किसान बागवान भाई बहन आखिर च कि आहदे एक गोभी वर्गी ऐसे जी अगेती फसल है तो इसकी भी मेरे ख्याल पनीरी लगाने का बिल्कुल सही टाइम इस टाइम है, आज क्या क्या सावधानियाँ बरतनी और क्या क्या उन्नत किस्म इस रही है मैडम?
0: देखिए ये जो हमारी कुछ किसान भाई बहन जो हैं वो अगेती गोभी फूल गोभी लगा इस टाइम पे लगाते हैं
1: जी।
0: तो उसको लगाने के लिए आप पनीरी कम से अभी 10-15 दिन में जो है वो कई किसान भाई बहन प्लान कर रहे होंगे लगाने के लिए
1: जी।
0: तो उसके लिए आपको क्या करना है अपनी नर्सरी की जो जगह है वो एक ही जगह पे हर साल नहीं लगानी है, और ऐसा भी नहीं कि अभी टमाटर की पनीरी लगाई उसी जगह पे आप दोबारा से अपनी गोभी की पनीरी लगा दें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी जो जगह है नर्सरी लगाने की पौध लगाने की उसको हर साल बदलें। उसके बाद अपनी मिट्टी को हमें उपचारित करना चाहिए। देखिए जो ये जो बीमारियां हैं जो कमर तोड़ है या बाकी कई जो बीमारियां हैं कईयों की शुरुआत जो है वो नर्सरी से होती है, तो कमर तोड़ और अन्य बीमारियों को कुछ बीमारियों को रोकने के लिए हमें जो जो उसके जो जो आता है जो फफूंदी है या जो बैक्टीरिया आता है वो या तो बीज से आएगी या हमारी मिट्टी से आएगी, तो हमें अपने बीजों को उपचारित करना है, हमें अपनी मिट्टी को भी उपचारित करना है। मिट्टी को उपचारित करने के लिए आप फॉर्मलिन का उपयोग कर सकते हैं, बाजार में फॉर्मलिन मिलता है, 1 भाग फॉर्मलिन और 7 भाग पानी का एक मिश्रण बनाएं, उसको इस मिट्टी ये जो मिट्टी है जहाँ पे आपने क्यारी लगानी है उसकी मिट्टी को इकट्ठा करें, उसमें इस घोल को फॉर्मलिन और पानी के घोल को रखें और उसमें डालें, और उसके बाद इस मिट्टी को आपने जो है वो पॉलीथीन से ढक देना है, किसी भी कलर का पॉलीथीन किसी भी मोटाई का पॉलीथीन जो है वो चलेगा, उससे आपने ढकना है और किनारों को जो है वो मिट्टी से दबा देना है। इससे क्या होगा ये जो फॉर्मलिन फॉर्मेल्डिहाइड है ये फॉर्मलिन है, ये गैस निकालती है। वो गैस जो है हमने उस मिट्टी में हमने बांधनी है, उसमें रोक के रखनी है, ताकि हमारे फफूंदी के, बैक्टीरिया के या के जो हमारे कीट हैं उनके जो अंडे हैं, उनके जो कण हैं, वो मर जाएं। तो ऐसे आपने ढक के 7 दिनों तक रखनी है। उसके बाद ये पॉलीथीन शीट हटा देनी है और उसके बाद आप मिट्टी को खुला रखना है कम से कम 10 से 14 दिन, ताकि अब उससे फॉर्मलिन की सारी गैस निकल जानी चाहिए। गैस निकलने के बाद 14 दिन के बाद आपने फिर क्यारियां बनाकर उसमें अपना जो है वो अपने बीज जो है वो उपचारित करने हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मैम बहुत अच्छी जानकारी तो वहाँ करने साझा की थी, और समय का थोड़ा भाव है, अदरवाइज यहाँ और भी बहुत सारी गलबात करनी थी। तो वहाँ इस कार्यक्रम चाहे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ करने साझा की थी, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जितने भी श्रोता है तिन्हें जो ये जानकारी बड़ी लाभप्रद लगी होनी। तो हाँ मैडम, स्टूडियो चाहे इतनी अच्छी जानकारी साझा की थी, इस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और जितने भी यहाँ के श्रोता है इस कार्यक्रम जो छड्डी ने कितनी मत जानते, क्योंकि अहाँ हूँ इस कार्यक्रम च जानकारी देनी सब्जी मंडी समिति हमीरपुर से प्राप्त फलां सब्जियां कड़े जिनसा दे थोक भाव दी, ता जुड़े रहे हंदे आकाशवाणी हमीरपुर ने।
2: किसान भाइयो, उन टाइम ओदा बाजार भाव दा, ता कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर से प्राप्त फलां कने सब्जियां दे थोक भाव दी गल करिए, ता सब्जियां च आलूआ दा भाव रिया 10 से 12 रुपये प्रति किलो, पहाड़ी आलू 14 से 16 रुपये प्रति किलो, कने प्याज रहा 26 से 28 रुपये प्रति किलो, गोभी 60 रुपये प्रति किलो, बंद गोभी 25 से 30, शिमला मिर्च 50 रुपये प्रति किलो, घिया 20 से 25 रुपये प्रति किलो, लौकी 25 से 30, कने करेले का भाव रहा 30 से 35, पालक 50 से 60, धनिया 180 रुपये प्रति किलो, टमाटर का भाव रहा 40 से 45 रुपये प्रति किलो, कने राम तोरी का भाव रहा 35 से 40, गाजर 40 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्च 40 से 45, नींबू 50 रुपये प्रति किलो, कने खीरे का भाव रहा 20 से 30 रुपये प्रति किलो, बैंगन 30, कने आदरा 230 से 250 रुपये प्रति किलो, कने गल करिए लसने दी, ता लसने दा भाव रहा 140 से 170 रुपये प्रति किलो, मटर 90, फ्रांस बीन 100 से 110 रुपये प्रति किलो, कने अरबी दा भाव रहा 30 से 32 रुपये प्रति किलो। कने गल करिए फलां दे थोक भाव दी, ता फलां च केले दा भाव रहा 550 से 600 रुपये प्रति डब्बा 12 किलो दा, कने सेब 160 से 170 रुपये प्रति किलो, अनार 160 से 190 रुपये प्रति किलो, मौसमी 110 से 120 रुपये प्रति किलो, कीवी 1100 से 1300 रुपये प्रति डब्बा, अनानास 45 से 50 रुपये प्रति किलो, मरूद 100 से 110, माल्टा 160 से 180 रुपये प्रति किलो, तरबूज 16 से 17 रुपये प्रति किलो, कने खरबूजा 40 से 45 रुपये प्रति किलो, कने अंब सफेदा रहा 80 से 90 रुपये प्रति किलो, कने अंब दशहरी 55 से 65, कने पलम रे 110 से 120 रुपये प्रति किलो, लीची 160 से 170 रुपये प्रति किलो, कने मशरूम रे 30 से 35 रुपये। तो किसान भाइयों, ये तो थे अज के बाजार भाव। इस दे कन्ने ही आंदे कार्यक्रम किसान बाणी दा टाइम भी इत्थे खत्म होया या। तो हुण सारे ही सुनने वाले जमना जुदिया कार्यक्रम जो खत्म करने दी अनुमति। नमस्कार।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: कला बोल रहा
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। वो अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब ही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप पे बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: किसान वाणी कार्यक्रम दे प्रायोजक कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
6: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में
7: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
8: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
9: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
7: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला भक्ति गीत।

जी श्रोताओं, अभी हमने सुना अधिकार फिल्म का ये भक्ति गीत जिसे गाया था आशा भोंसले ने। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए अब सुनते हैं आदि पुरुष फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे गाया है सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये भक्ति गीत जिसे गाया है पामिला जैन और साथियों ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंकुश फिल्म के इस भक्ति गीत के साथ ही अब आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनकां गराइंदियां।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनका ग्राएं दियां। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: दोस्तों, वन की सुरक्षा के लिए उसे आग से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वनों को आग से बचाने के लिए हम अगर अपने तौर पर प्रयास ना करें तो पर्यावरण की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि जंगल में आग जीवन का विनाश, आओ मिलकर करें इसका ह्रास। जंगल की आग को जो रोकेंगे, हम आने वाले कल को सुरक्षित देखेंगे, क्योंकि सूखी पत्ती छोटी चिंगारी, निगल सकती है हरियाली हमारी। पिकनिक बनाओ, खुशियां पाओ, पर जंगल में आग की चिंगारी मत छोड़कर जाओ। वन है तो हम हैं, आग से इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, एक छोटी सी लापरवाही सदियों पुराने जंगलों को राख कर सकती है। जंगल में कभी भी तीली या सिगरेट ना फेंकें और कैंप फायर को पूरी तरह बुझाकर ही निकलें। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये

0: युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। राज्य में वीबीजी रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने और प्रदेश हितों के अनुरूप सुझाव तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति 29 जून तक मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुसार योजना के कई प्रावधान राज्य और स्थानीय श्रमिकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर वीबीजी रामजी योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी राज्यों को 30 जून तक नई योजना अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नई योजना को अधिसूचित करने वाले राज्यों को ही बजट आवंटित किया जाएगा। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के में हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: दूसरी ओर पूर्व परिवहन मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के निर्णय को कांग्रेस सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है और अब एस्मा के सहारे उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में रजोल, अनुही, जांगल, बग्गा सड़क और इसी मार्ग पर बनने वाला पुल शामिल है। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्य तय समय और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माण में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने युवाओं और नेताओं से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश के विकास में सहयोग देने का आह्वान किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक व महान राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे प्रत्येक देशवासी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
2: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
0: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। वीबीजी रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा। वृद्धाश्रम

0: मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे,
0: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
7: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
8: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण।
1: अरे सुनती हो, कहाँ हो?
2: अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं,
3: लगता है सब कहीं गए हैं।
2: नहीं नहीं, गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो, मैं आवाज देता हूँ।
1: सरला, ओ सरला,
4: कौन है?
1: मैं हूँ, किवाड़ खोलो।
4: आती हूँ।
5: क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया।
2: नहीं नहीं, अभी ही आए हैं, तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
5: हाँ, मुन्ने को सुला रही थी।

0: अच्छा छोड़ो, देखो तो, ये देखो कौन है।
1: नमस्ते भाभी जी।
2: नमस्ते भाई साहब।
0: भाई वाह जी, नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय।
2: परिचय करवाओ तो।
0: तो लो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद्र। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे।
1: पर भाभी जी, इस प्राण को इस निर्मोही ने निकाल फेंका था।
2: अच्छा? वो क्यों?
1: क्योंकि मैं
0: क्योंकि व्योंकि छोड़, क्या फिर झगड़ेगा?
1: नहीं,
0: और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी?
2: अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए, अंदर आइए।
0: चल भाई अंदर चल।
2: बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ।
0: हाँ हाँ, कहाँ जा रही हो?
2: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊँ।
1: चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना।
2: अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुँह दिखाई भी देनी है ना।
1: मुँह दिखाई? अच्छा अच्छा, समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंगकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुँह दिखाई देनी है आपको।
0: सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सरला तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
2: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
0: और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज कैसा यार, भाई मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ।
0: हाँ हाँ।
1: गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ क्या ठाट है?
0: अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता।
1: हाँ।
0: तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था?
1: भाई वहाँ एक लड़की काम करती है।
0: हाँ।
1: मिस मित्रा, उसी से
0: मिलने गया था। यही ना, देख प्रेम तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था?
1: ओफ़, रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी।
0: अच्छा सुना।
1: अरे भले मानुस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है?
0: हाँ, हाँ, वो तो पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है?
1: संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास।
0: हाँ।
1: और कहीं मिल ही नहीं रहे थे।
0: अच्छा खैर छोड़। अरे सरला चाय ले आई?
2: हाँ हाँ चाय ले आई, देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
0: अच्छा लो, ये लो।
2: लीजिए चाय लीजिए।
1: वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुघर गृहिणी हैं।
2: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनके दृष्टि में तो मैं बैड हाउसवाइफ हूँ।
1: क्यों बे कृष्ण, क्या ये बात ठीक है?
0: अमा यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा ले, लेके खा।
1: अरे नहीं,
0: और लेना।
1: अमा बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा।
0: जाएगा?
1: हाँ।
0: अबे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ।
1: नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही।
0: परसों?
1: हाँ परसों। लीजिए भाभी जी।
2: क्या है?
1: परसों लोक नृत्य का शो है ना।
2: हाँ,
1: उसके
2: हाँ।
1: दो टिकट हैं ये।
0: देख भाई प्रेम, ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दे, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे।
2: हाँ भाई साहब, ये ठीक ही कह रहे हैं।
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और दो बच्चे, 4 टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे 2 टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना। और ये तो आपकी मुंह दिखाई है।
0: क्यों नहीं, अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला।
2: हाँ हाँ।
0: ये टिकट ले लो, नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो वो रुपए ले आओ।
1: रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं?
0: वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला वो रुपए ले आओ।
2: जी अच्छा।
1: यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है? है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने।
0: मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था, पर
1: क्या?
0: पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तौल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है।
1: अबे तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार, पर इस बार
2: क्या भाई साहब, लीजिए ये लीजिए रुपए।
1: जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी।
2: नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा।
1: हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण।
0: अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं।
1: नहीं नहीं मुझे अभी बाहर जाना है।
0: तो वहीं से ही चल।
1: ओफ अच्छा चल, तू ही जीता मैं हारा।

0: अब सो गया। सोना तो जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन नहीं सोना चाहता है?
0: यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधम। मैं तो तंग आ जाती हूँ।
1: तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती।
0: लो और सुनो, इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है?
1: यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपकाए रहती है, सुख में दुख में।
0: बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे?
1: काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है।
0: बातें मत बनाओ, सुनो।
1: हाँ?
0: गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाए।
1: क्या कहा, ऑफिस ले जाए?
0: मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं।
1: ऑफिस ले जाया करो, कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पनेंगे कैसे?
0: मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके।
1: अच्छा भाई चलो, मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है।
0: तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग।
0: नहीं नहीं, सुनते हो?
1: ओफो, क्या है?
0: मुझे नींद नहीं आएगी।
1: क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी?
0: चिंता हो रही है।
1: कैसी चिंता?
0: गीता और महेश की फीसें देनी है।
1: तो दे देना।
0: पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है।
1: क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना।
0: 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं, भला क्या जरूरत थी टिकटों की? उफ, मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है।
1: क्यों चिंता करती हो सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता।
0: ओफो, तो मैं कब कहती हूँ कि मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों?
1: लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता?
0: हाँ हाँ, नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं।
1: फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं, इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो।
0: फूंक देती हूँ? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ।
1: कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी सुघड़ है इसीलिए ना।
0: हाँ हाँ, मैं ही फोहड़ हूँ, ये नहीं सोचते कि उसकी गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी, घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आखिर पुरुष होना, पल्ले झाड़ कर अलग हो गए और दोष मेरे मत्थे मर गया।
1: अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे।
2: साहब क्या है, बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं।
1: अच्छा अच्छा, उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो।
3: अरे प्रेम, आओ आओ आओ भाई आओ। है
2: क्या, उसी से मिलने आए हो?
4: हाँ कृष्ण, उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया यार, मन आनंदित हो गया।
1: हाँ हाँ हाँ, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है।
4: अबे तो जलता क्यों है, उसने बड़े प्यार से 2 टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा।
1: क्या कहा?
4: आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
1: अच्छा अच्छा, बहुत ठीक बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई,
4: हाँ
1: शाम का क्या प्रोग्राम है?
4: प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे?
1: नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, क्यों ठीक है ना?
4: हाँ हाँ, बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा।
1: तो भाई बात पक्की है, ठीक 6:45 हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ।
4: ओके ओके ओके, ठीक 6:45।
1: हाँ भाई। अरे सरला, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई?
3: ओफो, देर ना हो जाए कहीं। रामू ये क्या है?
5: जी चाय।
3: अच्छा चाय को बाहर रख दो और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो।
5: जी हाँ,
3: मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला, अरे ओ सरला,
1: ओहो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
0: तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
1: क्या कहा, तैयार होना ही नहीं है, क्या कह रही हो तुम ये?
0: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता, तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़ो।
1: मुन्ना मुन्ना, तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
0: कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है, परंतु
1: देखो देखो सरला, परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली आओ।
0: ओफो, तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं?
1: मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? उफ़ो, गीता संभाल लेगी ना उसे। अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वो आके देख जाएंगे।
0: आकर देख जाएंगे, फीस के लिए रुपए कहाँ से?

0: कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए।
1: क्या कहा? फूंक दिए? हे भगवान, ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी। 50 रुपए जिंदगी दूभर हो गई है। अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
0: घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। अनपढ़ जाहिल गंवार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है? शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल से सुकुमारी थी ना।
1: हाँ हाँ, ठीक ही बात है। तब तुम कुछ और ही थी। तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी, और अब?
0: हाँ, अब क्या हो गया है?
1: अब क्या नहीं हुआ है? अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है। तुम ही बोलो, प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुलाओ, मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस नरक में।
2: आओ आओ कृष्ण, हमें देर हो गई।
1: हाँ देर हो गई।
2: हाँ, भाभी जी कहाँ हैं? क्या गाड़ी में बैठी हैं?
1: नहीं गाड़ी में नहीं, हाँ घर में बैठी हैं।
2: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अबे बात तो बता।
1: बात बात कुछ नहीं भाई।
2: हाँ,
1: मुन्ने को बुखार था, बस सरला नहीं आ सकी।
2: अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजी सुनती हो?
3: क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है?
1: वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है।
3: हैं? भाई साहब तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। भाई वाह प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं।
2: कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है। कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें?
3: ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी। प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं।
1: नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है।
2: सब संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए।
3: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
1: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं।
2: दिमाग तो खराब हो गए, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी, अब इसका उपाय क्या है? जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियां, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा।
1: पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
3: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
2: हाँ दोस्त, ये ठीक कह रही हैं, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए।
1: कहता तो तू ठीक है।
2: हाँ।
1: वास्तव में मैं पलायन वृत्ति को अपनाता जा रहा था,
2: और यही विषाद का मूल कारण है। अच्छा चल भाभी जी के पास चले।
1: नहीं नहीं चलो। हाँ। तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा, अपनी सरला के पास।
2: बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग।

तो ये थी नाटिका चांद की किरण, लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत मोहित चौहान की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म से। संदीप श्रीवास्तव ने इस गीत को लिखा, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
5: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

मैं और मिसेस खन्ना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सुजैन डिमेलो की आवाज़ों में। साजिद वाजिद का संगीत था।

डली 6 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और साथियों के स्वरों में। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, AR रहमान ने संगीतबद्ध किया था। और अब कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। मोहित चौहान की आवाज में लव आजकल फिल्म का गीत इरशाद कामिल ने इस गीत

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
3: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

संदेश से पहले आप सुन रहे थे आ देखें जरा। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे। धुन बनाई थी प्रीतम ने।

हमसे है मुकाबला इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, साथ ही एस जानकी की आवाज़ भी है। पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, एआर रहमान ने धुन बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के 7वें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई।

0: कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है, वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch-rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China, and South

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है?
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। इंग्लिश।

0: किशोर
1: भूल गए
0: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: प्यार का मौसम
1: बेशरम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

0: होगी।
1: अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदन पुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बीआर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें।

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद NSD से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और NSD से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने NSD में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफ़ी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। NSD करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप NSD की रेपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रेपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुंजी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सोहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहाँ भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्मयोद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम पांच, कलयुग, राज और पूनम है।

संगीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविज़न पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य जगत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दिलीप सिंह और अर्चना सिंह का कविता पाठ। आइए पहले सुनते हैं दिलीप सिंह का ये कविता पाठ।
3: चिट्टे दी अनचल माल ओ भाई जस चिट्टे ने ज्यादा प्रीत नहीं लानी औखे सौखे रो कह प्रीता जो जिपलाई अपनी चाणी आ देखा चिट्टा चिट्टा चिट्टा अज पूरे मुल्ख च ही गया छाई चिट्टा चिट्टा चिट्टा अज पूरे मुल्क मैं अज तुह जो केंद्र सरकार दी जानी हितकारी योजना के बारे च जिहड़ियां 12 सालों में सरकार के पास से चलिया तिन्हें बारे थोड़ा जिहा प्रकाश पाणा। तो सारे तो पहले दिलीप सिंह का सारे श्रोतागण जो नमस्कार तो कर्ज करते जी बोलिया पे केंद्र सरकार दिया जन हितकारी योजना सुना सजना तुह जो जन कल्याण दिया खास खास योजना गणाइए सुना सजना तुह जो जन कल्याण दिया खास खास योजना गणाइए तो जे कि चढ़ती योजना ही फिर कह नहीं मैं मैंने दी गाइए भाइयो कोई वक्त था तो अहे मुल्क सजनों कोई वक्त था तो अहे मुल्क एक सूई नहीं बनती थी तो क्या क्या दुखड़ा सुनाना तो सूई भी इंग्लैंड से बनी नहीं आती थी ता इन्हें लोग फिर सीने परोने का काम इतनी अपना चलाना अज ते भारतवर्ष हौलिया हौलिया हर एक क्षेत्र में अपने पैरों पर गौदा खड़ोई अज ते भारतवर्ष हौलिया हौलिया हर एक क्षेत्र में अपने पैरों पर गौदा खड़ोई फिर इसी दी तरक्की दिखी ने बाहरी ताकतें दी खास करने पाकिस्तान वाले तो जमे जा दी अखी तड़ोई अज अपने मुल्क भांत भांत दी योजना चलू दियाँ अज अपने मुल्क भांत भांत दी योजना चलू दियाँ तो तिना कितनिया सराइए सुना सजना तो जो कने जन कल्याण दी खास खास योजना गनाइए तो जे कि चढ़ती योजना ही फिर कह नहीं मैं मैंने दी गाइए भाइयो सारे तो पहले सजना सारे तो पहले 28 अगस्त 2014 जो सरकारें प्रधानमंत्री जन धन ऐसी अनोखी योजना चलाई भई अपन प्रजा तो भिन्न भिन्न बैंकों निशुल्क ही दिते थे खाते खुलवाई जे कोई अभागा जे कोई बेचारा कुसी दुर्घटना च अपंग हो जाओ या जानी बैठो अपनिया गुआई तो तिसके खाते सीधी पूजी जाती थी सरकार के पास से सहायता राशि आई फिर दिखा दिखी सरकार की सोच दिखी सरकार की सोच कहनी एड़िया परिवार जो बोलिया माड़ी मोटी राहत पजवाइए तो जे कि चढ़ती योजना ही तो कह नहीं फिर मैं इन्हें गाइए अगली योजना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 जो पै यही थी चलाना इसका उद्देश्य था भाई कुड़ियाँ पढ़ाई ने यह जो लिंग अनुपात का फर्क पाँगा ज़्यादा इस जो जरूर घटाना लोगों जो जागरूक करने लोगों जो जागरूक करने भ्रूण हत्या पर भी देनी रोक लाई जितना हो सको इन्हें बच्चियों जो उच्च शिक्षा देने अपने पैरों पर खड़ोने जोगी जरूर देनी बनाई इस योजना का लाभ लेने देवीए भी सोचा भाइयों इस योजना का लाभ लेने देवीए भी सोचा कि कह नहीं असें भी दुनिया च आई ने ना अपना कमाइए तो जे कि चढ़ती योजना ही फिर कह नहीं मैं मैंने दी गाइए अगे बोलते जी भाई तिसते बाद बड़े ध्यान ने सुनना तिसते बाद 1 मई 2016 जो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना की आई गई बारी प्रधानमंत्री उज्जवल योजना की आई गई बारी इस योजना तो गरीब परिवारों की अणगिणती दित्तियां महलां तारी इन्हें बेचारियों जो गैसा के चुल्हे मुफ्त मिले ने सरकार के पास से इन्हें बेचारियों जो सरकार के पास से गैसा के चुल्हे मुफ्त मिले ने कई बीमारियों से मिली गई छूटी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਵੋਟਣੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਦਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਕੋਟੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਾ ਵੀ ਇਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਗਾਈਏ। ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਵੋ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਸਕਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ। ਇਸਾ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਸਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਵੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 6000 ਰੁਪਈਆ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਦਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਦਿਖੀ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਭ ਬੁੱਝਾ ਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪਰ ਵੀ ਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜੇ ਸਿਰਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜੋ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ। ਸੱਜਣੋ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਭਜਵਾਈ। ਤੀਸਰਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਲ ਨੇ ਆਪੂ ਜੋ ਚਾਂ ਚਾਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਤ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਜਵਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਜਣੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਰਸਾਉਣਾ। ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਾ ਸਵਾਰਨੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੋਲੀ। ਇਸ ਢੰਗਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਮਾਂ ਬਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੱਜਣਾ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਈ ਨਿਆਰੀ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਤਰ ਮਾਣੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਾ ਕੁਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਠਵਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਰਸਾਉਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਚਮਕਾਰਾ। ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਚਮਕਾਰਾ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਪ 'ਚ ਲਗੂਦੀ ਆਈ ਲਾਉਣਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਟਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗਾਈਏ। ਭਾਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣੀ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਖਾਦਿਆਨ ਪਜਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਡੰਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਉਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਉਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਲਾਉਦਾ ਨਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਜਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹੀ ਗਈ, फिर भाजो एक गल स्वच्छ भारत मिशन की रही गई कहीं सहबी कजो छड़नी तह भी देंदे तो जो सुनवाई भाई पूरे देशवासी सरकार की बदौलत खुले च सौच जाने ते जमे लई मुक्ति पाई। दिलीप बोलता सजनों जे कविता बनाने च कोई कमी रही होंगी तो माफ़ करी देना कहनी दूई हत्थां जोड़ी ने नमस्कार फिर सारे सुनने वाले जो गलाइए तो एक एक चढ़ती योजना ही फिर कहनी मैं मन की गाइए सुना सजनों तुम जो जन कल्याण दिया कने खास खास योजना बनाइए जय हिंद जय भारत। हुण मेरी अगली जिहड़ी कविता जी कहदा शीर्षक है भाई चिट्टे दी अन झल मार। चिट्टे दी अन झल मार वो भाई जस चिट्टे ने ज़्यादा प्रीत नहीं लानी औखे सौखे रो कह प्रीता जो जे भलाई अपनी चाहनी आ देखा चिट्टा चिट्टा चिट्टा अज पूरे मुल्ख च ही गया छाई। चिट्टा चिट्टा चिट्टा अज पूरे मुल्ख च ही गया छाई इन्हें तो अजकल की युवा पीढ़ी अपने मकड़ जाला च बुरे हले ले फसाई। इस चिट्टे की बदौलत सजनों इस चिट्टे की बदौलत कई घर पाते जाते औले औले खाली। इस चिट्टे की बदौलत कई घर पाते जाते औले औले खाली तियां जो जोका माणुओं के खूना चूस दियां थियाँ तियां चिट्टा भी चूसता जाता चेहरे की सारी लाली। तिस जो जो लत लगी आ दी तिस जो जो लत लगी जाती तिसदा औले औले फिर मुकदा जाता दाना पानी। वो भाइया इस चिट्टे ने ज़्यादा प्रीत नहीं लानी औखे सौखे रो कैस प्रीता जो जे भलाई अपनी जानी। अगे बोलते जी भाई सजना इन्हें भांत भांत दिया नशा युवा पीढ़ी का छड़े नहीं कोई ठिकाणा। इन्हें भांत भांत दिया नशा युवा पीढ़ी का छड़े नहीं कोई ठिकाणा घर ते भेजे दे पढ़ने जो कन्नै नशे च डुब्बी ने लगते डुबकियां लाना अपरी नी चिट्टे ता अपरी नी चिट्टे ता अपना जिया जगह जगह ले अड्डा जमाई। इन्नी चिट्टे ता अपना जिया जगह जगह ले अड्डा जमाई माओ बब्बा दी खून पसीने दी कमाई है बस नशे च जा दे अन्ने बाह डवाई। समझाने की खरी गल भी कियां कुछ जो समझाणी वो पाइया इस चिट्टे ने ज़्यादा प्रीत नहीं लानी औखे सौखे रो कह प्रीता जो जे भलाई अपनी चाहनी। अगे बोलिया जी भाई चिट्टे का नशा करने वाले का औले औले चिट्टे दिखाई वो याद रंग चिट्टा। चिट्टे का नशा करने वाले का औले औले चिट्टे साई वो याद रंग चिट्टा वो बस अगे तो अगे ये रंग अपने आप पाँदा ज़्यादा फिके तो फिका बोला दे तिना जो जे इसकी लत लगी आ दी सैनी इसके बगैर सकते रही तिना जो जे इसकी लत लगी आ दी सैनी सकते इस बगैर रही तिने जो अपना जुगाड़ बनाना ही पवा दा चाहे सिरा गस जाओ पानी बेही। इन्हें नशेड़िए जो नशा प्यारा भाई जो इन्हें नशेड़िए जो नशा प्यारा जान नहीं प्यारी इस पर माया ही सारी लुटवाणी। वो भाई इस चिट्टे ने कहीं ज़्यादा प्रीत नहीं लानी औखे सौखे रोका इस प्रीता जो जे भलाई अपनी जानी। भाइयो इस चिट्टे दे एक नहीं गुरुआ दे गुरु बनुदे व्यापारी। इस चिट्टे दे एक नहीं गुरुआ दे गुरु बनुदे व्यापारी तां जे सै मोटिया कमाइया करा दे फिर कियां रुकनी है बीमारी। तिना जे करला जो भाइयो तिना जे करला जो देशा दे करण आधार बनना से केड़िए लगदे हंडना बाटा। तिना जे करला जो देशा दे करण आधार बनना सै केड़िए लगदे हंडना बाटा किछ नहीं बिगड़िया जां भी सीधे रस्ते आ जा पुठे मता फिरदे इस घराटा। वो किछ नहीं बिगड़िया जां भी सीधे रस्ते आ जा कन्ने पुठे मता फिरदे इस घराटा भले लोको बचाई दिखा अपने आपा जो। सजनो बचाई दिखा अपने आपा जो जानी बुझी ने जान नहीं अपनी ज़्यादा दुखों च पानी। वो भाइया इस चिट्टे ने कहीं ज़्यादा प्रीत नहीं लानी कई कई बार बोलते जी भी पुलिस भी बचारी क्या करो कई बार अपराधियों पकड़ने तेह जे भी जाते खड़ोई फोन पर फोन लगते बजना भाई ये अपने खास बंदा कि हाथ नहीं पाना कोई फिर तुसे आपू ही सोचा तंज इस चक्की जड़ाई पौना तो इन्हें बलाएं तो फिर छुट्टने का कुछ दुखड़ा रोना। इन्हें हाले दुनिया जाओ भांडे च इन्हें हाले दुनिया जाओ भांडे च सारे अपनी अपनी सोच साफ सुथरी बनानी। वो भाइया चिट्टे ने कहीं ज़्यादा प्रीत नहीं लानी। भाइयो नशे की तो गल्ला छड्डा भाइयो नशे की तो गल्ला छड्डा तुह जो इसते भी छैल एक गल होर देंदे सुनवाई भाई अजकल माँ बाप छोटे छोटे बच्चों के हाथ ही दिया दे चाँ चाँ मोबाइल न पकड़ाए तो दिन पर दिन लावदा जींडा पटना दिन पर दिन लावदा जींडा पटना। इन्हें बेटंगी रस्में वो दूं चौं सालों च ही कहीं लग जा दे फिर याने दी अखी नजरी दे चश्मे। इस गल्ला भी बड़े ठंडे दिल ने सोचा बस एक ही कहना सुनी ने दूंगा नहीं टपाणी सजना कने इस चिट्टे ने ज़्यादा प्रीत नहीं लानी ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰੋਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੀਤਾ ਜੋ ਜੇ ਭਲਾਈ ਆਪਣੀ ਚਾਹਣੀ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤੀ ਲੱਗਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਉਹ ਬੱਬਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਗਈ, ਬੋਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗਲਾਉਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਸਾ ਇਤਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਬਾ ਦੀ ਸਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਾ ਛੇਤਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਬਾ ਦੀ ਸਹਾਰੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਾਤੀ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨੇ ਵਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲਾਏ ਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ। ਬੱਬੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਉਣੀ, ਸਜਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ। ਭਾਈਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥਾ, ਸਜਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿਹੂੜਾ ਦੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਥੇ ਖਰੇ ਕਰਨੇ ਚਟਕਾਏ, ਤਾਂ ਡਰਾ ਗਏ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕਿਆ ਮਜਾਜ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਭੁੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦੀ ਪੈਰ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ, ਜੇ ਕੁਤੀ ਸ਼ਾ ਛੂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵਾਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਦੇ ਰੂਟ। ਇਸ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੁਛ ਹੀ ਘਟਾਉਣੀ, ਸਜਣਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ, ਸਜਣਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੁਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਤੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾੜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਪਾਉਣਾ। ਆਪਣ ਅੜ ਪੜੇਸ ਕੁਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਸੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁੜਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੈ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧੀ, ਸੈ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੀ ਸੁਵਿਧੀ, ਸੈ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾਉਣੀ, ਸਜਣਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਆਖੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖਾ ਅੱਜ ਸਹਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਸਹਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿਹਾਂ ਕਿਹਾਂ ਸਹਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਨੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈਓ ਸਹਿਜੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤਿਆਂ ਚੱਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਲਈ ਸਮਝਾਏ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਬਚਾਏ। ਦਲੀਪ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈਓ ਬਸ ਆਸੀ ਖੇਲੀ ਨੇ ਚਾਂ ਚਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਣੀ। ਦਲੀਪ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈਓ ਬਸ ਆਸੀ ਖੇਲੀ ਨੇ ਚਾਂ ਚਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰੋਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜੋ ਜੇ। ਚਾਂ ਚਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ।
2: ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਤਾਓ, ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ। ਆਈਏ ਅਬ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਅਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾ ਯੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ।
4: ਮੈਂ ਅਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਕਵਿਤਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਉਪਸਥਿਤ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਤੀ ਹੂੰ, ਜਿਸਕਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਵਰਖਸ਼ ਕੀ ਵਿਥਾ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਧੂਪ ਥੀ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜਲਾ ਰਹੀ ਥੀ ਧਰਤੀ ਗਗਨ, ਐਸੇ ਮੇਂ ਵੋ ਬਟੋਹੀ ਰਹਾ ਥਾ ਹਾਂਪ, ਐਸੇ ਮੇਂ ਵੋ ਬਟੋਹੀ ਰਹਾ ਥਾ ਹਾਂਪ, ਔਰ ਢੂੰਢਤਾ ਥਾ ਠੰਡੀ ਛਾਓ। ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਏਕ ਵਰਖਸ਼, ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਏਕ ਵਰਖਸ਼, ਜੋ ਥਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪਰ ਉਦਾਸ, ਬੈਠਾ ਵੋ ਬਟੋਹੀ ਵਹਾਂ ਸੁਸਤਾ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਵੋ ਬਟੋਹੀ ਵਹਾਂ ਸੁਸਤਾ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲਗੀ ਉਸੇ ਸਹਿਲਾ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮੇਂ ਲਗੀ ਥੀ ਉਸਕੀ ਆਂਖ ਭੀ, ਤਭੀ ਏਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸਨੇ ਸੁਨੀ, ਵਿਸਮਿਤ ਹੋ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਆਸ ਪਾਸ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਵਹਿ ਯੇ ਤੋ ਹੈ ਇਸ ਵਰਖਸ਼ ਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਾਨੋ ਵਹਿ ਸੁਨਾ ਰਹਾ ਥਾ ਆਪਣੀ ਵਿਥਾ, ਬਟੋਹੀ ਕੋ ਪਾ ਕਰ ਜਾਗਾ ਉਸਮੇਂ ਕੁਛ ਉਤਸਾਹ, ਵੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੇ ਬੋਲਾ ਬੇਟੇ, ਵੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੇ ਬੋਲਾ ਬੇਟੇ, ਤੁਮ ਆਜ ਯਹਾਂ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਲੇ ਭਟਕੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਯੇ ਚਬੂਤਰਾ ਭੀ कभी आबाद रहा करता था। बच्चे यहाँ खेलते थे और मजमा जुड़ा रहता था। कभी झूले डाले जाते मेरी इन डालियों पर, कभी गीत गाए जाते बैठ मेरे चबूतरे पर। मेरी घनी छाया में बैठ वृद्ध सुख पाते, कुछ दूसरों की सुनते कुछ अपनी सुनाते। किंतु बदले सब अब वक्त बदला, पर मैं अब भी साक्षी बन खड़ा। समय को मानो पंख लगे, समय को मानो पंख लगे, लोग छोड़ गांवों को शहरों की ओर चले। पर मैं आज भी अपनी ठंडी छांव लिए खड़ा हूँ आस लगाए, पर मैं आज भी अपनी ठंडी छांव लिए खड़ा हूँ आस लगाए, शायद फिर कोई यहाँ आए, मेरी सुने और अपनी सुनाए। सिसक पड़ा था वह वृक्ष, सिसक पड़ा था वह वृक्ष, कह अपने एकाकीपन की व्यथा, और बटो ही वहाँ खड़ा खड़ा बस सोचता रहा कि क्या कभी रुकेगा ये पलायन और जाना शहरों की ओर, क्या फिर सब लौटेंगे गांव और प्रकृति की ओर। और श्रोताओं, जो अब मैं अपनी कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रेरणा, ये प्रेरणा मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मिली और इनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये एक हमें संदेश दे रहे हैं। बस यही भावनाएं इस कविता में व्यक्त हो रही हैं। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत बरसों से यूं ही खड़े हैं मौन, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत बरसों से यूं ही खड़े हैं मौन, पास आने पर इन्हें देखकर लगता है ऐसे मानो ये प्रेरणा देते। पास आने पर इन्हें देखकर लगता है ऐसे मानो ये प्रेरणा देते कि ना डिग ना हट, अटल रह स्थिर बन, वरना ये संसार तुझे जीने ना देगा, तब जीवन की जंग तू हार जाएगा, खो बैठेगा अपनी ताकत और फिर हिम्मत ना जुटा पाएगा। ये संसार तो बेगाना है, ये संसार तो बेगाना है, यहाँ कोई किसी का नहीं, बनते हैं सब अपने पर अपना कोई नहीं। ना धन ना दौलत तेरे काम आएंगे, ना धन ना दौलत तेरे काम आएंगे, तेरी सोच तेरे विचार और तेरे कर्म ही तुझे ऊंचा उठाएंगे। कई बार नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर हम भी अपने बचपन में खो जाते हैं, खासकर उन बच्चों को जो बस्ता लेके स्कूल भागते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं और बोलते हैं। बस इसी से प्रेरित होकर मैंने भी ये कविता लिखी और इसमें बहुत कुछ मुझे सत्य जान पड़ता है। सचमुच जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो ऐसे ही भाव लेकर ये कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरे घर के सामने है नन्हे मुन्नों का एक स्कूल, मेरे घर के सामने है नन्हे मुन्नों का एक स्कूल, जिसका रास्ता मेरे घर के सामने से होकर जाता। मैं रोज अपने घर के बरामदे में बैठती हूँ लिए आस कि देख पाऊँ इन नौनिहालों का उल्लास, जो अपने बस्तों के बोझ के तले, जो अपने बस्तों के बोझ के तले दबे जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल की घंटी बजते ही मैं भी दौड़ पड़ती हूँ, स्कूल की घंटी बजते ही मैं भी दौड़ पड़ती हूँ मेरे बरामदे की ओर, और देखती हूँ चारों ओर उन बच्चों का चहकना, भागना दौड़ना हंसना और खिलखिलाना, सुनती हूँ उनका बोलना और बतियाना। देख उन्हें जी उठती हूँ तब मिल गया हो जैसे मुझे नया जीवन, और याद आ जाता है तब अपना बचपन। भूल जाती हूँ सारे उपक्रम और खो जाती हूँ पुरानी यादों में, लगता है जैसे मैं भी थी उन बच्चों में, लगता है जैसे मैं भी थी उन बच्चों में। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे चल पड़ते अपने घर, भूल जाती हूँ इन्हें देखकर अपनी क्षीण होती आयु को, भूल जाती हूँ इन्हें देखकर अपनी क्षीण होती आयु को, फिर से एक बार जी लेती हूँ जीवन के उस बचपन को। और श्रोताओं, मेरी अगली कविता का शीर्षक है आह्वान। आओ बहनों, हम सब मिलकर संकल्प लें, आओ बहनों हम सब मिलकर संकल्प लें अपने राष्ट्र को मजबूत करने की, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की और मर्यादा में रहने की। मातृत्व व सामाजिक मान्यताओं की सीमा में रहकर भी आगे बढ़ने को आतुर बने और याद दिलाएं अपनी सभी बहनों को कि वक्त पड़ने पर हमारे पग कभी पीछे ना हटे ना मुड़े। अरे हमने ही तो पुरातन युग में तमाम आपदाओं के बावजूद वेद शिक्षा व राजधर्म को अपनाया। हमने ही राष्ट्र निर्माण हेतु अपने प्राणों की आहुति दी और समय पड़ने पर जौहर व्रत दिखलाया। हमने ही राष्ट्र निर्माण हेतु अपने प्राणों की आहुति दी और समय पड़ने पर जौहर व्रत दिखलाया। तो आओ बहनों, सब पुनः मिलकर अच्छे बनकर रहने की प्रेरणा बने और नव राष्ट्र का निर्माण करें और इस कथन को एक नया आयाम दें कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। और श्रोताओं, मेरी अगली कविता का शीर्षक है आधुनिक नारी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आधुनिक हम कैसे होते हैं। आधुनिक होते हैं हम अपने विचारों से, अपनी सोच से, केवल पहनावे से ही हम आधुनिक नहीं कहलाते। और आज की नारी वास्तव में आधुनिक ही है। उसने जो कुछ पहले देखा सहा उससे वो अब हट गई है और बहुत कुछ अपने विचारों की, अपनी शिक्षा के बल पर आगे बढ़कर वो कर रही है। तो कुछ ऐसे ही भाव मेरी इस कविता में है जिसका शीर्षक है आधुनिक नारी। मनु और श्रद्धा का यथार्थ, नारी पुरुष का सुंदर संसार, परंतु परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत। पुरुष स्वच्छंद और नारी परतंत्रता की बेड़ियों से लहूलुहान। ये शायद पहले समय में महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा होगा, लेकिन अब इन सब मान्यताओं को सभी महिलाओं ने तोड़ दिया है, इसीलिए तो वो आधुनिक नारी कहलाई है। तो ये पंक्तियां मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी कि मनु और श्रद्धा का अर्थात नारी पुरुष का सुंदर संसार, परंतु परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत। पुरुष स्वच्छंद और नारी परतंत्रता की बेड़ियों से लहूलुहान। दहेज पर बलि चढ़ाई हुई, चिता की आग में झोंकने की प्रथा आदि तमाम कुरीतियों को आत्मसात करने को मजबूर थी नारी। परंतु आज वक्त के प्रवाह को अपनी अभिव्यक्ति दे रही है नारी। आज पुनः नए रूप, नए रंग, नए अंदाज में घूंघट से बाहर निकलकर समय का सदुपयोग कर और समय को मुट्ठी में बंद कर कुछ करने को बेताब है आज की आधुनिक नारी। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अकेला रह जाता है। अकेले से मेरा मतलब है कि उसके जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं। ऐसे में वक्त काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बस एक ऐसी ही नारी के भाव हैं जो अपने घर में है, अकेली है, वो वक्त किस तरह काट रही है, कैसे काट रही है, इसी तरह के भाव लेकर ये कविता मैं आपको सुना रही हूं जिसका शीर्षक है मेरा ये अंगना। इसी अंगना में उतरी थी मेरी डोली, इसी अंगना में उतरी थी मेरी डोली, इसी अंगना में पली मेरी प्रेम कहानी। इसी अंगना में नन्ही नन्ही चिड़िया आती, दाना चुग पानी पी उड़ जाती। इसी अंगना में मेरे दो फूल खिले, इसी अंगना में नींबू और आम फले। इसी अंगना की धूप देखी, बरसात देखी, इसी अंगना की धूप देखी, बरसात देखी, इसी अंगना में दुख सुख मधुर बात देखी, इसी अंगना में बेटे की बहू आई, इसी अंगना में बेटे की बहू आई और इसी अंगना से बेटी हुई पराई। आज बेटा बेटी नाती पोते सब जा चुके हैं, अपना अपना घर बसा चुके हैं। मैं खटिया पर बैठ इसी अंगना के एक कोने में, मैं खटिया पर बैठ इसी अंगना के एक कोने में धूप में चमकते सफ़ेद बाल लिए इसी अंगना को निहारती हूँ। आज भी ये नन्ही नन्ही चिड़ियाँ, आज भी ये नन्ही नन्ही चिड़ियाँ पानी और दाने की खोज में मेरे इसी अंगने में आती हैं, दाना चुग पानी पी उड़ जाती हैं। मैं बैठी देखती रहती हूँ, बस देखती रहती हूँ इन चिड़ियों का आना और फुर से उड़ जाना, बस इसी तरह अपना समय काटती हूँ, बस इसी तरह अपना समय काटती हूँ।
2: जी श्रोताओं, अभी आपने सुना अर्चना सिंह का कविता पाठ। इसी के साथ अब आज का साहित्य जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम में गीतों की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, जब दिल की बात जुबां तक आती है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें प्यार तो छिपा ही होता है, लेकिन शर्मो हया भी आड़े आती है। कैसे अपने प्यार की बात सबके सामने जाहिर करे, नायिका के मन में यही उलझन होती है। लेकिन बात तो वही है कि जब दिल की बात लबों पे आती है ना, तो वो छुपाए नहीं छुपती।

जी हाँ दोस्तों, जब भी हम पहाड़ों का जिक्र करते हैं ना, तो आंखों के सामने बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पर्वत, चीड़ और देवदार के घने जंगल और वादियों में गूंजती नदियों की कल कल बहती आवाज का आभास होने लगता है। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक और चीज है जो सबसे ज्यादा दिलकश है, वो है यहाँ के लोगों के दिलों में बसता निश्चल प्रेम और यहाँ की अमर प्रेम कहानियों को पनपते और इतिहास बनते बहुत सारे लोगों ने देखा है। इसी पावन धरती के आंचल से निकली एक बेहद खूबसूरत और सुरीली दास्तां जो कहती है उन ऊंचे और सुंदर पर्वतों की ओट में बसी एक छोटे से गांव में दो दिल धड़कते हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो चलिए देर किस बात की, अपनी आंखों को बंद कीजिए, दिल को थोड़ा सा सुकून दीजिए और सफर पर निकलिए उस हसीन गांव की ओर और सुनते हैं उस गांव की खूबसूरत जज्बातों से सराबोर ये मधुर गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है ना। जब ये किसी से होती है तो ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत लगने लगता है और दिल बस यही दुआ करने लगता है कि वक्त ठहर जाए और हमारी सांसें सिर्फ उसी के नाम से चलें। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो सांसों में इस कदर बस जाए कि अगर वो दूर हो तो धड़कने रुक जाएं और पास हो तो दुनिया थम जाए। कुछ ऐसा ही रूहानी एहसास समेटे हुए है हमारा अगला गीत, जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें मध्यम हो जाती हैं और वो गीत के जादुई बोल सीधे रूह को छूने लगते हैं। आइए सुनते हैं और महसूस करते हैं सिर्फ हमारे साथ।

जी हाँ दोस्तों, वक्त का पहिया भी कितना अजीब है ना। जब अपनों के साथ महफिल जमती है तो ये पंख लगाकर उड़ जाता है, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के इस खूबसूरत सफ़र में बस थोड़ा सा समय बचा है। और वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि मुलाकातें चाहे कितनी भी लंबी हों, बिछड़ने का एक लम्हा तो आ ही जाता है। लेकिन रेडियो का रिश्ता तो दिल का रिश्ता है ना। यहाँ कोई कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होता। कल फिर मिलने के वादे के साथ हम आपको ये गीत की सौगात भेज रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, और चलते चलते यही कहेंगे कि यादों के झोंके तो आते ही रहेंगे, दिल के तार यूं ही थिरकते रहेंगे। फासले कितने भी हों दरमियां हमारे, हम तो हर रोज़ आपके रेडियो में मिलते रहेंगे।

0: जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अलविदा कहने की बजाय एक वादा करते हैं दोबारा मिलने का। और अब आइए समेट लेते हैं यादों के इस हसीन सिलसिले को। और अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। इसके साथ ही अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।